0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
6: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
7: हजार 97.1 FM।
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकया ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिंग रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazza 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डैब।
13: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: Zabardast hits.
6: Music never sounded better.
2: Fazan 97.1 FM.
6: I love it.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: This is a public service announcement.
8: The station.
9: That plays.
10: Foot tapping music.
11: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baseford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Get ready to move.
2: It's all about the beat.
3: Wow,
4: Only Tune Super Hit Channel.
5: Fizz on 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
6: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
7: हजार 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डंकन रोड नॉटिंघम या अभी रابطہ करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डैब।
13: You are listening 97.1 FM.
14: Are you

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: This is a public service announcement.
6: The station
7: that plays
8: foot tapping music.
9: Hazar 97.1 FM.
10: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई दिन भी मैं।
1: You are listening 97.1 FM.

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: Hit music.
3: Back to back.
4: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
5: जो मंगना सी वो तो मिल गया

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: primary school examinations 2 times. He failed 3 times during his middle school exams. He failed 2 times before he was accepted by what was considered the worst university in his city. He even applied to Harvard University 10 times and got rejected every single time. But that's not all. This was only during his education. Jack Ma was never a great student. He was always terrible at math, and actually he still is today. He failed in several subjects in school, but he possessed some kind of awareness that convinced him that being at the top of the class doesn't mean that you're intelligent or that you will ever be successful. He knew that there is more. Jack tried and failed to get a job after applying to them 30 times. When KFC came to China, 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only guy who wasn't. He was also one of the 5 people who applied for a job in police force and was the only one getting rejected after being told, "No, you're no good." But when he was asked about his rejections, he said, "Well, I think we have to get used to it. We are not that good." After spending 3 years to get into a university, graduating with a bachelor's degree in English, he started working as an English teacher with a pay of only $12 per month. But he was never discouraged by any of this. The very important thing you should have is patience. And he did. In 1995, he had his first encounter with the internet when he went to US with his friends, and he was fascinated. He saw the lack of Chinese webs as an amazing business opportunity for him. So with no experience in coding or in computers, he founded an internet company for China. Unfortunately, his first 2 companies failed to succeed. But for the boy who failed his whole life, this was a starting point on his journey to success. So 4 years later, he gathered 17 of his friends in his apartment and convinced them to invest in his vision to create an online marketplace he called Alibaba. The main idea was that the site will allow exporters to post product listings that customers could buy directly. But the beginnings were really hard. In the beginning, I just wanted to survive. For the first 3 years, we made 0 revenue. But soon, the service started to attract members and investors from all over the world. And the company has raised $5 million from Goldman Sachs and $20 million from SoftBank. Since then, Alibaba has become the biggest online marketplace in China and generates more profit than Amazon and eBay combined, and has turned Jack Ma into one of the richest people in the world. So don't let your humble beginnings, your level of education, your lack of resources stop you from pursuing your dreams. Because your success is determined by the amount of effort you put in. And most important, by not giving up when failure hits you. And it will hit you. If you don't give up, you still have a chance. Giving up is the greatest failure. Because if there is a man who knows the meaning of failure, it is Jack Ma. Before reaching his 30s, he felt like a failure all the time. He felt like a loser. But that didn't discourage him. On the contrary, he said, "I know this is a training course for me." He looked at every challenge in his life like an opportunity. Jack Ma never thought in his life that he will be a businessman. He never thought he would be a teacher. And most certainly, he never thought he would become one of the richest people in the world. But at some point in his life, he was all of those people. On the opposite, there were other things he wanted to do, like he wanted to be a policeman and he wanted to work at KFC, but ended being the only one who got rejected. And it looks like those rejections and failures were for his own good. So don't be afraid of your failures. Once in your life, try something, work hard at something, try to change. Nothing bad can happen. And remember, never give up. Today's hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. So, what's your story?
1: वाओ वाओ वाओ जी। तो लिसनर्स वेलकम बैक। ये थी जनाब जबरदस्त सी इनक्रेडिबल सी स्टोरी द ग्रेट जैक मा की। और अब मुझे लगता है कि हर बंदा ना बड़ा जबरदस्त मोटिवेट, मैं तो इतना जबरदस्त मोटिवेट हो चुका हूँ कि बस आज के दिन ना वो कहते हैं ना तबाहियां फेर देनी है जनाब। एनीवे जोक सपाट जनाब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं अक्सर एक चीज नोट करता हूँ, एक चीज हर वीडियो में से या कोई भी ऑडियो जो मैसेज आप तक पहुँचता है या जो भी पैगाम हम पहुँचाना चाहते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी ऑफ टीम, बेसिकली क्या पैगाम होता है, बेसिकली सामने यही पैगाम होता है कि हमने कभी भी फेलियर्स को अपनी ढाल नहीं बनाना, कभी भी नहीं सोचना कि हम नाकाम हो चुके हैं। नए नए टारगेट्स आते हैं, नई नई अचीवमेंट्स आपको मिलती हैं, आप उनको विन करते हैं। और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, चीज़ें ऐसी होती नहीं हैं जैसी देखी जा रही होती हैं। कहते हैं ना, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा, कैमरे की आंख भी धोखा खाती है। इंसान बेसिकली कर कुछ और रहा होता है, नज़र कुछ और आ रहा होता है, क्योंकि माइंडसेट बिजी रहता है। जनाब ऐसी कुछ स्टोरी थी हमारे जैक मा की, इनका भी माइंडसेट बिजी था, करना कुछ और चाहते थे, हो कुछ और रहा था, और कभी भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, और कभी ये भी नहीं सोचा था कि ईबे या अमेज़न के लेवल पे ये बंदा कम्पीट करेगा। एक ज़बरदस्त सा व्यक्ति जिसको अनपढ़ होने के साथ साथ इंग्लिश भी नहीं आती, और टूरिस्ट के साथ साथ यानी गाइडर के साथ अपना एक करियर शुरू किया, और उसके बाद अपने करियर को कहां तक पहुंचाया, किस जगह तक पहुंचाया, ये सारी चीज़ें इस जबरदस्ती सेगमेंट में यानी पर्सनालिटी ऑफ द डे में आपने मुलाहिजा की। तो जनाब इसका रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, और इसका जो फाइनल फ्रेज है वो क्या है, वो मैं आपके सामने रखे देता हूं कि आपके पास कामयाबी आती है। यानी अगर आज का दिन आपका बुरा है, कल का दिन मजीद बुरा होगा, परसों का दिन मजीद बुरा होगा, लेकिन उससे आगे आपको सनशाइन जरूर मिलेगी। तो जनाब उस सनशाइन के इंतजार में मेहनत जरूर कीजिए, वक्त को जाया मत कीजिए। अगर आप किसी एक जगह पे फिट नहीं हो रहे तो हो सकता है कि वो प्लेस, वो स्पेस आपके लिए ना हो। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो हो सकता है आपने कोई एम्प्लॉय गलती से हायर करके उस जगह पे बिठा दिया हो जिसमें उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। हो सकता है कोई अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपने ऐसा कोई एम्प्लॉयर चुना है कि बेसिकली तो आपको नजर आ रहा था कि ये कंपनी या ये सिचुएशन या ये जो जॉब है ये मेरे माइंडसेट के साथ चलती है, मेरी क्वालिफिकेशन के साथ चलती है, मैं इसमें बहुत ज्यादा तरक्की करूंगा और मैं अपने एम्प्लॉयर को बहुत ज्यादा फायदा दूंगा। लेकिन जब आप पानी में उतरते हैं, जब आप गोताजन होते हैं जबरदस्ती गहराई में, तब आपको इस चीज का अंदाजा होता है, अरे नहीं, सिचुएशन डिफरेंट है। तो फिर मूव ऑन कीजिए, क्योंकि ना आप अपना टाइम ज़ाया करें ना अगले का टाइम ज़ाया करें। और इस तरह जब आप अपने वक्त को अहमियत देना शुरू करते हैं तो फिर आपके पास कामयाबी हमेशा के लिए आती ही आती है। जनाब ये मेरी विशेष टिप्पणी है, मेरे राय हैं, कुछ और मैसेजेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बहुत ही ज़बरदस्त सी कोट मेरे साथ शेयर की जा चुकी है, और ये भी कहाँ से जनाब, 92 आई थिंक ये नंबर तो पाकिस्तान का है, मे बी यहाँ से आपके लोग होते हैं व्हाट्सएप जो है वो दूसरी कंट्री का यूज़ करते हैं, कोई इंडिया का, कोई हिंदुस्तान का, कोई पाकिस्तान का, कोई नेपाल का, बांग्लादेश का, जहाँ जहाँ पे लोग रहते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो जी वेलकम भी आपको, जहाँ पे भी हैं आप। जना बिल्कुल रोमन इंग्लिश में, रोमन उर्दू में लिखा गया, लेकिन मैं पढ़ूंगा जरूर। पढ़ते पढ़ते जना मैं आपको ये बताता हूँ। कहते हैं जी, बुरे वक्त से घबराए नहीं, हाँ बुरे वक्त से घबराए नहीं, क्योंकि ये अक्सर आपको कुछ अच्छे सबक सिखाने, कुछ अच्छे फैसले लेने और कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। जनाब थैंक यू वेरी मच, वक्त तो वक्त होता है, अगर बुरा है तो आप वक्त को बुरा नहीं कह सकते, आपका वक्त बुरा चल रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि जमाने को या मुआशरे को, सोसाइटी को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी का ये कलमिया है, वो कलमिया भी बड़ा मजेदार सा, बड़ा फनी सा, आप इंजॉय करेंगे इस चीज को। हम अक्सर ये बात करते हैं, बातों बातों में नहीं बातें कह जाती है, यार मुआशरा ही ऐसा है, यार निज़ाम ही ऐसा है। अरे निज़ाम में ढले हुए हम लोग हैं, हमारा माइंडसेट उस चीज़ को मैच नहीं कर पा रहा, हमारा माइंडसेट उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा जो मुआशरे में हो रहा है। आप उसको गलत कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके सामने 10 लोग ऐसे हों जो उसको सही कह रहे हों, जो उसको सपोर्ट कर रहे हों। तो फिर अपने आप को थोड़ा सा एनालिसिस की तरफ आपको लेके जाना चाहिए, जब आप अपनी सोसाइटी के एनालिसिस करते हैं, अपनी सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं, तब आप एक अच्छे सिविलाइज्ड जो होते हैं ना लोग बनते हैं, यानी एक अच्छे शहरी बनते हैं, एक अच्छे नागरिक आप बनते हैं। और आपको हमेशा ये कोशिश रहती है, आपको इस चीज़ का अंदेशा रहता है, आपको इस चीज़ का आपके विचार मैच नहीं करते लोगों के विचारों के साथ, तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा अलग थलग फील करना शुरू कर देते हैं। अब सिचुएशन क्या है कि जब आप अलग थलग फील करते हैं तो आप लोगों से मिलना कम कर देते हैं। आप ये समझते हैं कि यार लोगों से मिलूंगा उलझूंगा ज़्यादा, ये होगा वो होगा, और फिर उसके बाद तो जहन जो है माइंड सेट है वो तो खदशात का घर है। अगर आपका माइंड में एक खदशा जन्म ले चुका है तो फिर यकीन करें कि उसने आगे बीसियों खदशों को जन्म देना है, उसने आगे बहुत ज़्यादा जो खदशात हैं उनको लेके साथ चलना है। और फिर जब ज़्यादा से ज़्यादा खदशात भरते जाते हैं माइंड सेट में और माइंड फिर चेंज होता जाता है, माइंड फिर समझने की जो सलाहियत है उसको खोना शुरू कर देता है, फिर आपके पास जो अंडरस्टैंडिंग इवैल्यूएशन है, जो आपकी जो मेन आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है अंडरस्टैंड करने की किसी चीज़ को समझने की, वो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जाती है। फिर अक्सर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर डॉक्टर आपको कहता है कि आपकी रेजिस्टेंस पावर यानी आपकी कुव्वत मुदाफ़त ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म हो रही है, आप ऐसे इकदाम करें, आप ऐसे कदम लें, आप ऐसा कुछ करें, और फिर मुख्तलिफ एक्सरसाइज बताई जाती हैं, कुछ मेडिकेशन भी होती है। ये सारी चीज़ें बिलोंग करती हैं कि आप स्टार्ट में अपनी समझ को कहाँ तक लेके जाते हैं, आप किस तरह अपनी समझ को अपनी अंडरस्टैंडिंग को इवेलुएट करते हैं, क्या आपकी सोच, क्या आपके विचार वक्त के साथ बह रहे हैं, क्या आपके विचार टाइम के साथ मूव कर रहे हैं, यानी इसलिए अपने आप अपने विचारों को मॉडरेट करना, थोड़ा सा ग्रो अप करना माइंडसेट के लिए बेहद ज़रूरी है।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
0: Bigger and better the radio station for people who love music. 97.1 FM.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो फजाना 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर मैं आपके साथ आपका मेजबान कुछ ट्रैक्स आपके सामने दोबारा रखे गए कोश गुजार किए गए बेसिकली आपकी समाधों की नजर किए गए ताकि कुछ साहिबान कुछ हजरात कुछ व्यक्ति और कुछ पुरुष इन चीजों को एंजॉय कर सके। हमारे नॉर्गम शहर की जितनी भी पर्सनैलिटीज इस वक्त हमें सुन रही हैं आपका बेहद शुक्रिया। तो जनाब जबरदस्त सा हैक था फजा आइडिया का कि पांच चीजें कैसी हैं कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकती हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी को आपने अवॉइड करना है, उसके बाद अच्छे से प्लांट्स अपने इर्द गिर्द रखिए जो आपको फ्रेश ऑक्सीजन अनायत करें, और उसके बाद आप उनसे भी आप कुछ एनर्जी ले सकें। उसके बाद पॉजिटिव लोगों से मिलिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग जो एक दूसरे को स्माइल देके गुजरते हैं, जैसा कि मैंने अक्सर आपको बताया सुबह का भी वक्त था, वो भी मैंने आपको बताया कि कितने खूबसूरत अंदाज में वो जो बुजुर्ग हैं वो जो अंकल हैं वो मुझे स्माइल करते हैं बड़े प्यारे अंदाज में। आज दो वीक्स के मुसलसल काविशों के बाद आज हम दोनों ने एक ही वक्त पे सेम टू सेम स्माइल पास किए। तो ये जो कनेक्शन होता है बहुत ही ज्यादा आपको स्वस्थ करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं जिंदगी में मजीद आगे बढ़ने के लिए। और उसके साथ ट्रैश अपने आगे पीछे बिल्कुल भी ना रखिए, अगर आपकी डस्टबिन ऑफिस की भर चुकी है तो उसको खाली कीजिए। और उसके बाद सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज, अपने डे को प्लान कीजिए। डे को प्लान करने के साथ साथ आप अपना वक्त जाया होने से भी बचा सकते हैं। तो जहां वक्त का आज का हमारा टॉपिक था ये विशेष टिप्पणी थी, लेकिन अब कुछ ट्रैक्स मेरे पास मौजूद हैं जो मैं आपके सामने रखे देता हूं, आप एंजॉय करेंगे इन ट्रैक्स को। ट्रैक्स के उस पार मैं आपके साथ नहीं रहूंगा क्योंकि हाइल होगी खूबसूरत कमर्शियल ब्रेक। बिल्कुल जनाब, धीरे से मत आए, तेजी से आए जिंदगी में क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं आपका। और जो लोग इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी होने का नाटक कर रहे हैं और बहुत ज्यादा किसी चीज में खोए हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि जनाब ये ड्रामे मत कीजिए। जिनको मैं कहना चाहता हूँ वो समझिए, हाई रेटेड गबरू जितने भी हैं ना वो सारे मर गए हैं क्योंकि इतने सख्त कवानीन आ रहे हैं, गेहूं वापस के कंप्लायंस पूरे करने हैं आपने। एनीवे नाउ जोक्स अपार्ट, नॉटिंघम के जितने भी वासी हैं उन सब के लिए बेहद खूबसूरत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन के साथ गुजारेगा क्योंकि रहना है आपने ट्यून अप विद फजा 97.1 एफएम। स्टे ट्यून, स्टे पॉजिटिव, स्टे एनर्जेटिक विद फजा 97.1 एफएम एंड ऐप। राइट नाउ यू हैव टू से गुड बाय, अपने मेजबान आसिफ खान को दीजिए इजाजत। कल जनाब नई एनर्जी के साथ, नई फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एनर्जी के साथ, नए सब्जेक्ट, नए सवालात, नए टॉपिक के साथ रहेगी आपसे फिर से मुलाकात ठीक 8 से 10 इन द मॉर्निंग इन वन एंड ओनली शो विच इज गुड मॉर्निंग नॉटिंघम। हियर वी गो, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।

लें जनाब, निचोड़ निकाल लिया जिंदगी का, किसी को प्यार दे दें, किसी का ले लें, यही जमाने में कामयाबी की जबरदस्ती सीढ़ी है। अभी भी नाम जान भी आपके लिए हाजिर है। 01157100971 ये वो नंबर है जिस नंबर पे आप मैसेज करके अपनी जो विशेष टिप्पणी, अपने विचार है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मुझसे शेयर कीजिएगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ ना, स्टे ट्यून्ड फजा 97.1 FM, उसके साथ साथ स्टे पॉजिटिव एंड स्टे एनर्जेटिक, बिकॉज आई एम हियर टू प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। 97.1 FM ऑल द वे फ्रॉम नॉटिंघम। This is your favorite show, Good Morning Nottingham.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.

അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്തേ, സത്യാകാർ. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ, എക്സൈറ്റിംഗ് പ്ലസ് ചാർമിംഗ് മോർണിംഗ്. आप सभी लिसनर्स के लिए, सिर्फ लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट, आप सभी की दोस्त आरजे सैना फातिमा. और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की, साथ ही साथ होती है आपकी और मेरी कम्युनिकेशन, और फिर प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत ट्रैक्स. सो वेल, कुछ इन तमाम से चीज़ों को मिलाकर बनता है हमारे दीवा डायलॉग का पैटर्न. सो द लिसनर्स, आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दीवा डायलॉग, एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और बहुत सारे गॉसिप्स के साथ. सो वेल लिसनर्स, अब से ले गए ठीक दो घंटे तक हम और आप रहने वाले हैं साथ साथ. सो ये बातचीत का सिलसिला, गपशप आपकी और मेरी साथ ही साथ चलती रहेगी. सो आपने बस इसी तरह से हमारा साथ देना है और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है. सो वेल लिसनर्स, हमारे वो तमाम सारे लिसनर्स जिन्होंने अभी अभी तक अपने इस खूबसूरत दिन का आगाज कर लिया है, तो वेल एंड गुड. लेकिन अगर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक इस खूबसूरत दिन का आगाज नहीं किया, अगर आप सुस्ती काहली में मुब्तिला हैं या फिर इस सोच विचार में है कि ये आने वाला नया हफ्ता आपके लिए कौन से नए चैलेंजेस को लेकर आएगा, तो वह घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमने भी अभी तक प्रोग्राम का बकायदा तौर पर आगाज नहीं किया. तो आइए मिलकर करते हैं इस खूबसूरत से दिन का, खूबसूरत से प्रोग्राम का आगाज एक साथ. सो वेल लिसनर, सबसे पहले बताइएगा कैसे हैं आप सब. उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और इस नए दिन की इब्तिदा कर चुके होंगे, और आई एम श्योर कि आने वाला नया दिन आपके लिए लेकर आएगा बहुत सारी शुभकामनाओं को और साथ ही साथ बहुत सारे अनयूजुअल चैलेंजेस को. वेल मैंने अक्सर सुना है कि लोग चैलेंजेस से थोड़ा सा डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा काम आता है, कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी अनयूजुअल होती है, तो वो आपको एक स्ट्रेंथ देती है, एक एबिलिटी देती है कि आप खुद को प्रूव करें, ना सिर्फ खुद को प्रूव करें बल्कि कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मुनफरिद करके दिखाएं.

सुबह लिसनर्स, सबसे पहले बताइएगा कि आज के दिन के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या करने वाले हैं और क्या करने का इरादा रखते हैं। वेल, अगर आपको कोई भी चीज डिस्टर्ब कर रही हो या ऐसा हो कि कोई भी चीज आपको थोड़ा सा बॉदर कर रही हो तो घबराने की कोई बात नहीं, आप अपनी समस्याओं को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए। सो भरपूर कोशिश तो हमारी यही रहती है कि हम हर दिन आपको ना सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें बल्कि आपकी वो तमाम तर क्यूरीज, वो तमाम तर बातें जो समटाइम्स एक इंसान को ऐसा लगता है कि ये काम मुझसे नहीं हो पा रहा, तो हम भरपूर कोशिश करते हैं कि हम उन तमाम तर चीजों को भी साथ ही साथ सॉर्ट आउट करें। लिसनर्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे पूछा है कि आज के दिन के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया ही नहीं कि किस तरह से आप अपने उन प्लान्स को, उन गोल्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको बताती हूँ वो तमाम तर मेथड जिनके थ्रू आप हमसे ना सिर्फ कम्युनिकेट कर सकते हैं बल्कि आप हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे छोटे से प्यारे से नंबर की, सॉरी 01157100971। जी हाँ लिस्टर्स, ये है हमारा छोटा सा लेकिन प्यारा सा नंबर। सो जल्दी से कर लीजिए इस नंबर को सेव क्योंकि इस नंबर के थ्रू ना सिर्फ आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि आज के दिन के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या करने वाले हैं आप लोग और क्या करने का इरादा रखते हैं। साथ ही साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि प्रोग्राम के हवाले से आप क्या स्पेसिफिक सुनना चाहते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई सजेशन हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें, सो वो तमाम तरह चीज़ें भी आप इस नंबर के थ्रू हमसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं अपने किसी चाहने वाले को कोई भी प्यारा सा गाना डेडिकेट करना, सो उसके लिए भी आप इसी नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो करना बस आपने इतना है, आपने सेव कर लेना है ये नंबर, इस नंबर पे जाना है, अपने नाम के साथ कोई भी प्यारा सा पैगाम या जो कुछ आप शेयर करना चाहते हैं हमसे बस लिखकर भेज देना है। वेल, भरपूर कोशिश की जाएगी कि आपकी तमाम तरह क्यूरीज को हम फुलफिल करें और हम अपना दीवा डायलॉग आप ही की तरह, आप ही के मुताबिक ऑर्गेनाइज करें।

लिसनर्स, ये है वो तरीका जिसके थ्रू आप अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं हम उस मेथड की जिसके थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं। सो अगर आप रेडियो फजा 97.1 FM को ट्यून करना चाहते हैं तो मैं आपसे शेयर करती हूँ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। सो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है radiofaza.co.uk। सो ना सिर्फ ये एक वेबसाइट है बल्कि है एक रابطے का जरिया जो आपको मुझसे और मुझे आपसे जोड़ता है। सो इस वेबसाइट के थ्रू आप ना सिर्फ हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप जान सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM से रिलेटेड हर तरह की मालूमात। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि रेडियो फजा 97.1 FM पर आप कौन से नए इवेंट्स हैं आने वाले, साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज है खूबसूरत दमदार और आप अपनी आवाज का जादू जगा सकते हैं, सो उसके लिए आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी हमारी इस वेबसाइट में। सो इस वेबसाइट से आप हमें ट्यून भी कर सकते हैं और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। सो जल्दी से लॉग इन कीजिए इस वेबसाइट को और जानिए आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस प्रोग्राम में है आने वाला। सो आप अपने तमाम तरह कामों को उस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है होता था बचपन में कि जिस दिन मेरा फेवरेट सीरियल लगेगा या फिर फला टाइम पर मेरा फेवरेट एक्टर या आरजे मुझे सुनने को मिलेगा। सो मैं क्या किया करती थी कि मैं अपने कामों को फिर उसी तरतीब से ऑर्गेनाइज कर लेती थी ताकि साथ ही साथ खूबसूरत खूबसूरत आवाजें सुनने को मिले और साथ ही साथ आप अपना डेली का कामकाज करते रहें। सो वेल लिसनर्स, अब से आप बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिले विदाउट एनी इंटरप्शन, सो उसके लिए आप रेडियो फजा डॉट हमारी एप्लीकेशन जो कि है रेडियो फजा 97.1 FM, सो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इंस्टॉल करने का तरीका भी बड़ा सिंपल सा है, आइए मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। तो अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जाना होगा एप्पल स्टोर, जस्ट इन केस कि आप एप्पल यूजर हैं। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आप सिंपली जा सकते हैं गूगल स्टोर, वहां जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स पर्पल कलर की आने वाली स्क्रीन आइकन की एप्लीकेशन, जी हाँ, जो आपकी स्क्रीन पे राइट नाउ पॉप अप कर रही है यही है हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन। सो आपने जल्दी से इसे कर लेना है इंस्टॉल और बन जाना है हमारी इस फैमिली का हिस्सा। सो द लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो एक एक करके मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं वो तमाम तरीके। वेल, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं।

चलो लिसनर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ है अभी एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सोचिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार। सो स्टे ट्यून्ड टू द फजा 97.1 FM।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम तरह सुनते हुए समातों को तहे दिल से खुशामदीद। तो लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट, आपकी दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा, और एक बार फिर से आप सभी को बताते चलती हूँ कि आप ट्यून कर रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 87.1 FM पे। सो वेल लिसनर्स, हमारे वो तमाम तरह लिसनर्स जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, तो आप सबको एक बार फिर से वेलकम, और साथ ही साथ ये कि हमें बताइएगा कि आप हमें दुनिया के किस कोने से ट्यून कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप क्या करते हुए हमें ट्यून कर रही हैं। सो उसके लिए आप किस तरह से हमसे शेयर करेंगे, एक बार फिर से बताती चलती हूँ। 01157100971 है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, यानी मेरा और आपका रबते का जरिया। तो उम्मीद करते हो कि अभी तक हमारे मोस्टली लिसनर्स ने अपने इस खूबसूरत से दिन का आगाज कर लिया होगा। जैसा कि है आज मंडे, सो मंडे को लेकर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे जुड़ी हुई। जैसे कि जब आप ऑफिस जाते हैं तो आपके बॉस की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे कि अब आप एक वीकेंड गुजार कर आए हैं तो यू मे बी अ मोर प्रोडक्टिव, और साथ ही साथ आपके माइंड में भी बहुत सारी इनर थॉट्स होती हैं कि अच्छा कितना मज़ा आ रहा था वीकेंड में, काश ऐसा हो कि वीकेंड ही चलता रहता। या पे कभी कभी आप ऐसा भी सोचते हो कि आई विश ये वीकेंड लॉन्ग वीकेंड बन जाए। और मोस्टली लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको मंडे को सुबह उठने को दिल ही नहीं कर रहा होता। सो वेल लिसनर्स, बताइएगा कि क्या आप कैटेगरी ए में से बिलोंग करते हैं या फिर मेरी तरह कैटेगरी बी, जो ये कहता है कि मंडे को उठने का दिल ही नहीं कर रहा, काश आज के दिन भी थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए। सो बात करते हैं हमारे उन सभी लिसनर्स की जिन्होंने अभी तक इस खूबसूरत दिन का आगाज किया है। सो अगर आप इस खूबसूरत दिन का आगाज कर लिया है, आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ है रवाना, सो अगर आप रास्ते में हैं या पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब, सो आप इस सफर को, इस रास्ते को और इस डेस्टिनेशन को बना सकते हैं मजीद खूबसूरत, मजीद यादगार। किस तरह से, आइए वो मैं आपको बताती हूँ। सो आप हमें फजा डैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं, वहां पर हमारा साथ दे सकते हैं। सो जल्दी से हमें ट्यून कीजिए और साथ होने का एहसास दिलाइए।

चलो लिसनर्स, आई होप आपने इस खूबसूरत ट्रैक को एंजॉय किया होगा। कुछ इसी तरह से आप एंजॉय करेंगे हमारे आज के टॉपिक को। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सिर्फ बुक्स या फिर समटाइम्स लोग समझते हैं कि ये थोड़ा अकेडमिक टाइप लगता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स अ रियली इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस, और इससे मुतलिक हम सभी को इन्फॉर्मेशन होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक हमारी डेली लाइफ के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करें। सो टुडे हमारा आज का टॉपिक है सिटीजनशिप। सो बेसिकली अक्सर हम सिटीजनशिप का नाम सुनते ही पासपोर्ट या नेशनैलिटी के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली सिटीजनशिप सिर्फ किसी कंट्री का पासपोर्ट रखना या इस तरह से वहाँ की नेशनैलिटी रखना नहीं होता। इसका असल मीनिंग काफ़ी ब्रॉडर है जिसके मुतलिक बहुत सारे लोग नहीं जानते। सो कुछ इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ इसका डिटेल रिव्यू शेयर किया जाए। सो वेल लिसनर्स, सबसे पहले हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि सिटीजनशिप एक्चुअली होती क्या है। सो सबसे पहली बात कि आया सिटीजनशिप होती क्या है। सो सिटीजनशिप बेसिकली ये डिफाइन करती है कि कौन किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर है और उस पर्सन का अपनी स्टेट, अपनी सोसाइटी और आसपास की कम्युनिटी के साथ कैसा रिलेशनशिप है। सो दैट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। सो सिंपल वर्ड्स में अगर आप किसी कंट्री के सिटीजन हैं तो आप उस पॉलिटिकल कम्युनिटी के ऑफिशियल पार्ट हैं। सिटीजनशिप के दो ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, आइए आपसे शेयर करती हूँ। सो फर्स्ट इज सिटीजनशिप एज अ लीगल स्टेट। इसका मतलब ये है कि सिटीजनशिप एक फॉर्मल और लीगल मेंबरशिप है, यानी आप ऑफिशियली किसी स्टेट या नेशन स्टेट के मेंबर हैं। इस लीगल मेंबरशिप के साथ आपको कुछ राइट्स मिलते हैं और साथ ही साथ आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं जिनको निभाना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी होता है। वो कहा जाता है कि कुछ हकूक एंड कुछ फराइज। सो जहां आप इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि आपको आपके बेसिक राइट मिले, वहीं इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप जिस सोसाइटी, जिस कम्युनिटी या फिर जिस स्टेट में रहते हैं उनके लिए आप कुछ ड्यूटीज़ को सर अंजाम दें। सो आपका पासपोर्ट इस लीगल सिटीजनशिप का एक बहुत कॉमन सिंबल है, लेकिन सिटीजनशिप सिर्फ लीगल होना इनफ नहीं। इसका सेकेंड एस्पेक्ट है सिटीजनशिप एज अ प्रैक्टिस और आइडेंटिटी। यानी सिटीजन होना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में किसी कंट्री का मेंबर होना नहीं होता, बल्कि सोसाइटी में एक्टिव रोल प्ले करना इस सभी के लिए बेहद ज़रूरी होता है। सो इसमें चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हम दूसरे सिटीजन के साथ कैसे बिहेव करते हैं, स्टेट का किस तरह से साथ देते हैं, दूसरों से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी में किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं, और सबसे बढ़कर कि हम अपनी कम्युनिटी के साथ किस तरह से लॉयल हैं और हमारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी हम किस तरह से फील करते हैं। सो ये वो तमाम जो चीज़ें हैं जो कि सिटीजनशिप के दो मेन एस्पेक्ट्स में आती हैं। सो सबसे पहले तो हमने बात की कि सिटीजनशिप क्या होती है। सो सिटीजनशिप ये होती है कि आप किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर होते हैं, ठीक है, और उस पर्सन को अपनी सोसाइटी या फिर स्टेट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होता है, ठीक है। सो आप किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर हो सकते हैं, आप अपनी सोसाइटी के अंदर रहते हो। जस्ट इन केस, जैसे कि वी लिव इन यूके, सो हम यहाँ पर एज अ सिटीजन हैं यूके के। सो अब बीइंग अ सिटीजन ऑफ यूके हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको फुलफिल करना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है लॉ इनका ख्याल रखना, कवानीन का ख्याल रखना। इसके साथ साथ कुछ हमारे हकूक हैं जो ये सोसाइटी हमें प्रोवाइड करती है। सो एक्चुअल डेफिनेशन ये है सिटीजनशिप की। अब सिटीजनशिप को किस तरह से देखा जाता है, तो सिटीजनशिप को देखा जाता है दो डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट से। फर्स्ट ये कि सिटीजनशिप एज अ लीगल स्टेटस, एंड द सेकेंड इज सिटीजनशिप एज अ प्रैक्टिस आर आइडेंटिटी, ठीक है। सो सबसे पहले हमने बात की, इसका मतलब ये है कि एक फॉर्मल मेंबरशिप होती है आपके पास, ठीक है, आप ऑफिशियली किसी भी स्टेट या फिर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और उस स्टेट या फिर सोसाइटी से बिलोंग करने के ऊपर आपके पास कुछ हकूक और फराइज होते हैं। सेकंड ये है एज अ प्रैक्टिस आर आइडेंटिटी, इसका मतलब ये है कि सिर्फ कागजात में किसी भी कम्युनिटी का मेंबर होना काफ़ी नहीं होता, आपको प्रैक्टिकली वर्क करना पड़ता है, आपको उस सोसाइटी के अंदर अपना एक रोल प्ले करना पड़ता है।
सो अब जरा बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ सिटीजनशिप. सो इसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद खूबसूरत से ट्रैक को शामिल करने का. सो अभी फिलहाल हमारे पास एक फरमाइश मौसूल हुई है वीकेंड सॉन्ग की. सो जैसा कि आपको पता है कि हमारे लिसनर्स को वीकेंड के ट्रैक्स बेहद पसंद हैं और वीकेंड हमारी जेंसी में बेहद मकबूल है. सो आइए मिलकर सुनते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक को, और ट्रैक के उस पर हम दोबारा से अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ एक टॉपिक है बल्कि एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा एज अ प्रैक्टिकल पर्सन जब आप किसी भी कम्युनिटी में जाते हैं, किसी भी सोसाइटी में जाते हैं.

सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन ऑफ सिटीजनशिप. सो बेसिकली ये क्या होता है? सो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट हमेशा से सेम नहीं रहे, यानी कि मुख्तलिफ अदवार में बहुत सारे लोगों ने इसे भी डिफरेंट तरह से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है. लेकिन मैंने आपके साथ एक सिंपल सी बेसिक सी ऑफिशियल डेफिनेशन शेयर की है. सो हम हिस्ट्री की बात करते हैं. हिस्ट्री के कुछ डिफरेंट पीरियड्स में सिटीजनशिप को बहुत सारे लोगों ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे में अंडरस्टैंड किया है. सो इसीलिए हम एवोल्यूशन को फोर मेजर स्टेजेस में कन्वर्ट करेंगे या फिर कह लें डिवाइड करेंगे. सो इसमें आ जाता है सबसे पहले एंशिएंट ग्रीस, रोमन रिपब्लिक, उसके बाद इनलाइटमेंट इरा और उसके बाद 20th century. ठीक है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं एंशिएंट ग्रीस यानी कि एथियन मॉडल की. सबसे पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट था सिटीजनशिप को अंडरस्टैंड करने का. सो एथन्स ने ही इसे डिस्क्राइब किया था. सो एथन्स में सिटीजनशिप एक बहुत एक्सक्लूसिव स्टेटस समझा जाता है, माना जाता है. यानी हर पर्सन सिटीजन नहीं बन सकता. सिटीजनशिप मेनली उन लोगों को मिलती है जो फ्री एडल्ट और नेटिव बोर्न मैन होते हैं. सो उनकी थ्योरी ये कहती थी कि कोई हर इंसान जो किसी सोसाइटी में रहता है, उस सोसाइटी से बिलोंग करता है, वो उस सोसाइटी का सिटीजन नहीं बन सकता. सो सिटीजन बनने के लिए सबसे पहले यू मस्ट हैव अ एडल्ट, सेकेंडली आप उसी नेशन बोर्न हो. वुमेन स्लेव्स और फॉरेन सिटीजनशिप से एक्सक्लूड किए जाते थे. ये उस टाइम पीरियड की बात है, ठीक है. लेकिन एथियन सिटीजनशिप के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे, आइए वो मैं आपसे शेयर करती हूँ. सो हर द्वार में लोग हर एक चीज़ को डिफरेंट वे में देखते हैं. सो एथियंस का समझा जाता था कि स्लेव्स कभी भी एक नेशन के मेंबर नहीं होते, फीमेल्स नहीं होती, सिर्फ वही लोग मेंबर्स होते हैं जो कि आज़ाद खुद मुख्तार होते हैं, अडल्ट होते हैं और सबसे बढ़कर वो उस नेशन के अंदर पैदा हुए होते हैं. सो अब इस थ्योरी के कुछ पर्सपेक्टिव था, कुछ पॉइंट थे जो मैं आपसे शेयर करती हूँ. सो सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन एंड सिविक वर्चू. सो सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो एक्टिवली पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करें. मिसाल के तौर पर पब्लिक असेंबली में पार्टिसिपेट करें, पब्लिक ऑफिसेस को होल्ड करें, मिलिट्री सर्विस और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जहां वो अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन को शो करें. उनके लिए सिर्फ अपनी पर्सनल बेनिफिट इंपॉर्टेंट नहीं होते थे, बल्कि सबसे पहले कम्युनिटी गुड और ऐसे पॉलिसीज जो ओवरऑल कम्युनिटी को अफेक्ट करें. सो दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी. सो यहीं पर आइडिया लेटर सिविक रिपब्लिसेशन की ओरिजिन का सबब बना. सो अगर आपको एंशिएंट ग्रीस को एक लाइन में याद रखना हो तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, ग्रीस मीन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी लाइफ. ठीक है. सो ये थ्योरी ये कहती है कि आप उसी नेशन के अंदर पैदा हुए हो, आप फ्री हो, आप अडल्ट हो और आप आज़ाद और खुद मुख्तार हो. ठीक है. और

के साथ अगर आप इसको एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, सो विच मीन्स कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर. आप ना सिर्फ खुद के बेनिफिट्स को तरजीह दो, बल्कि आप तरजीह दो सोसाइटी के बेनिफिट्स को. सो ये थ्योरी तो ये कहती है. अब जरा बात कर लेते हैं रोमन रिपब्लिक की, और देखते हैं कि रोमन रिपब्लिक के मुताबिक आखिर सिटीजनशिप एक्चुअली क्या होती है, सिटीजनशिप किस तरह से देखी जाती थी. सो इनिशियली रोमन में सिटीजनशिप भी ग्रीस की तरह लिमिटेड थी, लेकिन टाइम के साथ साथ रोमन सिटीजनशिप ज्यादा एक्सपेंसिव होती गई. सो रोमन्स का मेन फोकस था कि लीगल राइट्स एंड एक्सपेंशन. रोम ने एक लीगल सिस्टम डेवलप किया, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि था जस सिवाई, विच मीन्स लॉ फॉर सिटीजन्स. यानी रोमन सिटीजन्स के लिए स्पेसिफिक लॉ, लीगल प्रोटेक्शन और इस तरह की बेशुमार चीज़ें अवेलेबल हुआ करती थी. रोमन एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच यूज़ की. जब रोमन ने डिफरेंट पीपल्स को कंक्यूर किया तो उनमें से कुछ लोगों को रोमन सिटीजनशिप ग्रैंड की गई. इसका पर्पज था उन लोगों को रोमन पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम में इंटीग्रेट कराना. सो बेसिकली रोमन सिटीजनशिप ने सिटीजनशिप को मेनली लीगल स्टेटस, राइट, प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के परस्पेक्टिव से डेवलप किया. सो आई फील लाइक वो तमाम जो लोग जो कि ग्रीस एथेंस की थ्योरी से बिलोंग करते थे, उनके लिए रोमन की थ्योरी थोड़ी सी ब्रॉड थी क्योंकि इसमें उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते थे. सो अब अगर हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करें, सो ग्रीस मीन्स एक्टिवली पार्टिसिपेशन एंड रोम मीन्स लीगल राइट प्लस एक्सपेंशन. सो कुल मिलाकर इस तरह से सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रॉड किया गया इस थ्योरी के अंदर. सो अब जरा बात कर लेते हैं इनलाइटमेंट ईरा की. ठीक है, इस पीरियड में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर्स और पॉलिटिकल आइडियाज़ को चेंज किया गया जो इससे पहले सिटीजनशिप की डेफिनेशन में शामिल हुआ करते थे. सो थॉमस होबस और जीन जैकुई ने इस पीरियड में मेन फोकस किया था इंडिविजुअल राइट एंड कंसेंट पे. सो अर्लियर पॉलिटिकल थिंकिंग में रूलर्स की अथॉरिटी को ऑफन डिवाइन राइट से कनेक्ट किया जाता था, लेकिन इनलाइटमेंट थिंकर्स ने ये आइडिया काफ़ी हद तक चैलेंज किया. इनका फोकस शिफ्ट हुआ फ्रॉम द रूलर हैज़ अथॉरिटी बिकॉज ऑफ डिवाइन राइट टू वर्ड गवर्नमेंट गेट इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्न्ड. सो बेसिकली इससे पहले रूलर्स को लगता था कि दे हैव द राइट एंड अबिलिटी एंड हैव अ कवरेज टू डू एनीथिंग, बट इस थ्योरी ने शामिल किया कि सिटीजनशिप की बेहद पावर होती है और जो गवर्नमेंट कोई भी फैसला करती है, गवर्नमेंट के पास कोई भी अथॉरिटी होती है. सो जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्हें सिटीजनशिप की बदौलत वो अथॉरिटी मिलती है, सिटीजन्स जब उन्हें वो अथॉरिटी देते हैं. सो इस तरह से इस थ्योरी को काफ़ी हद तक चेंज किया गया, इसमें चेंज लाया गया. सो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो स्टेट और इंडिविजुअल के दरमियान एक रिलेशनशिप या एक एग्रीमेंट हुआ था. सो इंडिविजुअल के पास से नेचुरल राइट्स थे, मिसाल के तौर पर लाइफ, प्रॉपर्टी, और स्टेट का इम्पोर्टेंट रोल होता है इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना. सो इनलाइटमेंट को याद रखने के लिए सबसे मेन फोकस है कि आप इंडिविजुअल राइट्स प्लस कंसेंट, इन दोनों चीज़ों को फोकस करें. सो माय फर्स्ट थ्योरी कहती थी कि अगर आप इस नेशन में पैदा हुए हैं देन यू हैव सम राइट्स, ठीक है, तभी आप सिटीजन हैं. और साथ ही साथ ये भी कहती थी कि आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, जबकि हमारी जो सेकंड थ्योरी थी विच इज़ कॉल्ड रोमन थ्योरी, ठीक है. सो रोमन थ्योरी ये कहती थी कि आपने इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सपेंड किया, जहां आपने इस चीज़ को फोकस किया था कि जस्ट नेशन बॉर्न ही सिटीजन हो सकते हैं, वहीं आपने इस चीज़ पर भी ध्यान दिया कि वो तमाम तर लोग जो इस कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर बिलोंग करते हैं, वो भी हो सकते हैं मेम्बर. अब थर्ड हमारे पास आ जाती है इनलार्जमेंट ईरा. सो ये कहता है, इस चीज़ पे फोकस करता है कि इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करें. सो हर वो बंदा, हर वो पर्सन जो एक कम्युनिटी के अंदर रहता है, उसके पास जो जो राइट्स मौजूद हैं, सोसाइटी के हेड का क्या काम है कि उनके इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना उनकी इजाज़त से. सो आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको एग्री किया होगा क्योंकि इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट था सिटीजनशिप का उसे भी ब्रॉड किया गया है. सो अब हम अपने लास्ट थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं विच इज 20th
सेंचुरी मार्शल थ्योरी, ठीक है। सो सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर अब आता है T.H. Marshall। T.H. Marshall एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1950 में एक फेमस एसे लिखा सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। सो मार्शल के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप के राइट्स ग्रेजुअली 3 स्टेजेस में डेवलप होते हैं, सिविल सिटीजनशिप, पॉलिटिकल सिटीजनशिप एंड सोशल सिटीजनशिप। सो वेल लिसनर्स, इनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि मेरा फोकस यही था कि आप में हम सब मोस्टली डिफरेंट तरह की सोसाइटीज़ में रहते हैं, कम्युनिटीज़ में रहते हैं, बट वी डोंट अंडरस्टैंड, वी डोंट नो द टॉपिक, द मेन मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि आज हमने दिवा डायलॉग में इस टॉपिक को शामिल किया। होप सो आपको टॉपिक अच्छा लग रहा होगा। वेल फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो कमर्शियल ब्रेक से वापसी पर हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू द फज़ा 97.1 FM। हम बस यू गए और यू आए।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152, Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106, Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।

बैक वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी सुनते हुए समातों को खुशामदीद। तो लिसनर्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट, आप सभी की दोस्त आरजे सैनम फातिमा। एंड यू आर लिसनिंग राइट नाउ योर फेवरेट कंफर्ट प्लेस टीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पे। सो द लिसनर्स, अभी कमर्शियल ब्रेक पे हमें एक बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक की फरमाइश मौसूल हुई है। सो इतना खूबसूरत सा ट्रैक है, प्लस थोड़ा सा है इमोशनल। सो आपने इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं होना। आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, और पे ट्रैक से वापसी पर हम दोबारा से अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, विच इज कॉल्ड सिटीजनशिप।

So, well, listeners, it's a really beautiful song and I hope you enjoy it. So, ab, let's get back to the topic, jo ki tha hamara citizenship. So, ab hum baat karenge ki basically three stages jo ki 20th century mein Marshall ne develop ki thi. So, sabse pehli hamare paas stage hai civil citizenship, second is political citizenship and the third is social citizenship. So, sabse pehle hum baat kar lete hain civil citizenship jo ki thi 18th century mein. So, civil citizenship 18th century में डेवलप हुई. इसका फोकस था इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए ज़रूरी राइट्स. सो जैसे कि हम एक सोसाइटी में मूव ऑन कर रहे होते हैं, हमें किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, तो हर इंडिविजुअल को फ्रीडम चाहिए होती है. और उसको किस तरह से फ्रीडम मिल सकती है, उसके लिए कुछ बेसिक राइट्स थे इसके अंदर. अब इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ. सो फ्रीडम ऑफ द पर्सन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन. सो आप किसी भी सोसाइटी के अंदर देखते हैं, ये वो बेसिक फ्रीडम है जो एक हर इंसान के पास होना ज़रूरी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप में हम सब, नाउ वी लिव इन अ यूके. सो बीइंग अ मुस्लिम, वी हैव अ राइट कि हम अपने ट्रेडिशनल त्यौहारों को सेलिब्रेट कर सकें, हम अपनी तमाम तरह के टुगेदर्स को हैप्पीली इंजॉय कर सकें. सो इस फ्रीडम के ऊपर बात की थी मार्शल ने. सो सिविल सिटीजनशिप मीन्स, अगर हम इसको एक सिंपल लाइन में डिस्क्राइब करें, फ्रीडम एंड लीगल राइट्स. अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल सिटीजनशिप की, ठीक है, जो कि थी 19th सेंचुरी में. सो पॉलिटिकल सिटीजनशिप एसोसिएट करती है 19th सेंचुरी के साथ. इसका मेन फोकस था कि किस तरह से हम पॉलिटिकल पावर में पार्टिसिपेट करने का राइट हासिल कर सकते हैं. सो इसमें हम उन तमाम तरह राइट्स की बात करते हैं जो हर सिटीजनशिप के अंदर पास होते हैं किसी भी सोसाइटी और कम्युनिटी में रहते हुए. जैसे कि एग्जांपल शेयर करती हूँ आपसे, राइट टू वोट, राइट टू रन फॉर पब्लिक ऑफिस. यानी सिटीजन सिर्फ स्टेट के मेंबर्स नहीं होते, बल्कि उन्हें पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करने का राइट होता है. सो अब अगर हम एक सिंपल लाइन में इस चीज़ को डिस्क्राइब करें, तो सबसे पहले हमारे पास सिविल सिटीजनशिप, इसका मतलब है फ्रीडम एंड लीगल राइट्स, ठीक है, कि इंडिविजुअल के पास फ्रीडम हो और वो तमाम द राइट्स हों जिससे वो उस फ्रीडम को अचीव कर सके. और अगर हम पॉलिटिकल सिटीजनशिप की बात करते हैं, इसको एक सिंपल लाइन में डिस्क्राइब करते हैं, तो पॉलिटिकल सिटीजनशिप मींस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कि आप किसी भी स्टेट या जिस स्टेट में आप रहते हैं, आप बिलोंग करते हैं, आपके पास राइट हो कि आप पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में शामिल हों. अब बात कर लेते हैं थर्ड एंड द फाइनल स्टेज, विच इज सोशल सिटीजनशिप. सो फाइनली आती है सोशल सिटीजनशिप, जो कि एसोसिएट करती है 20th सेंचुरी के साथ. इसका मेन फोकस था इकोनॉमिक वेलफेयर एंड सिक्योरिटी पे. सो मार्शल के अकॉर्डिंग, सिटीजन्स को सोसाइटी के सोशल हेरिटेज में शेयर करना और सोसाइटी के प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एक सिविलाइज्ड लाइफ जीने का भरपूर राइट होना चाहिए. सो आई नो आप सब सोच रहे हो कि ये थोड़ी थोड़ी सी मुश्किल डिस्कशन है, बट ऑनेस्टली इट्स रियली सिंपल, इट्स रियली ईजी. सो मैं आपसे शेयर करती हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. यानी सोसाइटी के सिटीजन सिर्फ लीगली फ्री और पॉलिटिकली एक्टिव ना हो, बल्कि उसको बेसिक सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी हासिल हो. सो जैसे कि एक सिटीजन है, वो जिस सोसाइटी के अंदर रहता है, सबसे पहले उसे चाहिए कुछ इंडिविजुअल फ्रीडम और एक ऐसे राइट्स जिनकी वो दौलत वो सोसाइटी में रह सके. सेकेंडली अगर हम बात करें, तो उसे चाहिए ऐसे राइट्स जिसकी वजह से वो पॉलिटिक्स पे, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके. और थर्डली अगर हम बात करें, विच इज़ द सोशल सिटीजनशिप, सो इसमें ये कि हर सिटीजन के पास कुछ सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसे राइट होने चाहिए जिसकी वजह से वो खुद को स्टेबल कर सके, सोसाइटी में मूव कर सके, ठीक है. सो ये थी मार्शल की तीन स्टेजेस, और आई होप आपको ये स्टेजेस अच्छी लगी होंगी. और ये था हमारा आज का मज़ेदार सा टॉपिक. सो वेल लिसनर्स, फिलहाल प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक अदद फरमाइश, क्योंकि आपकी फरमाइशें हमारे पास ढेरों ढेर आती जा रही हैं और साथ ही साथ उनको शामिल करना भी बेहद ज़रूरी होता है. सो शामिल करते हैं आपकी फरमाइशों को और इस खूबसूरत ट्रैक को, ट्रैक के उस पार, फिर
होती है आपसे डिस्कशन और फिर हम आपसे एक फाइनल रिव्यू शेयर करेंगे।

आज के टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई भी किसी किस्म का भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक बार फिर से आपको बताते चलते हूँ 01157100971। सो वेल लिसनर्स, हमारे आज के जो टॉपिक का मेन मोटिव था वो आप सबको ये रियलाइज करवाना कि सिटीजनशिप सिर्फ किसी भी कंट्री की या फिर किसी भी सोसाइटी की नेशनैलिटी हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि इट इज़ एक्चुअली अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल स्टेट एंड सोसाइटी। सो गुड सिटीजन नोज देयर राइट, अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड द कम्युनिटी। सो वेल लिसनर्स, मैंने सोचा कि डेली बेसिस पर हम दीगर मामूलात ज़िंदगी से मुतलिक बातचीत करते हैं, विच इज़ क्वाइट नाइस, लेकिन हमें उस तरह के टॉपिक्स के ऊपर भी बातचीत करनी चाहिए जिन्हें हम अक्सर अवकात जरा थोड़ा साइड कर देते हैं। सो डेट इज़ द मेन रीज़न कि मैंने सोचा कि आज हम बात करते हैं सिटीजनशिप के ऊपर। सो नाउ यू रियलाइज कि आपके सोसाइटी में रहते हुए क्या हकूक बनते हैं, क्या फ़राइज़ बनते हैं, आया आपके पास कौन से हकूक होने चाहिए, या आपको कितना एक्टिवली रोल प्ले करना चाहिए किसी भी सोसाइटी या फिर किसी भी कम्युनिटी में रहते हुए। सो अगर आपका कोई भी किसी किस्म का भी सवाल हो तो सिंपली आप हमसे पूछ सकते हैं। एक बार फिर से बता दे चलती हूँ आप हमें किस तरह से ट्यून कर सकते हैं। सो फॉर लाइव स्ट्रीमिंग आवर वेब एड्रेस इज radiofaza.co.uk। सो इस वेबसाइट के थ्रू ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप जान सकते हैं हर तरह की मालूमात रेडियो फजा 97.1 FM से रिलेटेड। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कौन से हैं, नए प्रोग्राम्स आने वाले, साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ है खूबसूरत दमदार और आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, सो हर तरह की मालूमात आप हासिल करोगे इस वेबसाइट से। और आप ये भी जान सकते हो कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस प्रोग्राम में है आने वाला। वेल साथ ही साथ हमें आपकी फरमाइशें मौसूल हो रही हैं जिनको हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रोग्राम में शामिल करें। सो इसी तरह से आप हमें अच्छी अच्छी सी रिकमेंडेशंस भेजते रहें, बहुत अच्छा लगता है जब हम आपकी रिकमेंडेशंस को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सो फिलहाल हमें एक अदद सॉन्ग रिकमेंडेशन मौसूल हुई है, आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक।

0: सिविल एस्टेस प्रोग्राम में वक्त हुआ है अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने का। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दीवा डायलॉग इज इनकम्प्लीट विदाउट अ परफेक्ट रेसिपी। सो हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मजेदार सी डिलिशियस सी रेसिपी। सो रेसिपी को आपसे शेयर करना शुरू करती, लेकिन फिलहाल आपके मेरे बीच में थोड़ा सा वक्त रह गया है क्योंकि फिलहाल एक अदद कमर्शियल ब्रेक है आने वाला। सो आई एम थिंकिंग कि अगर मैं आपसे पहले ही रेसिपी शेयर कर देती हूँ या फिर सम इंग्रेडिएंट्स, तो हो सकता है थोड़ा सा मेस्ड अप हो जाए। सो उसके लिए फिलहाल के लिए हम वेट करते हैं और जब कमर्शियल ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम आपसे शेयर करेंगे आज की रेसिपी। सो तब तक आज के दिन के हवाले से बात कर लेते हैं। जैसा कि आज मंडे है, आई नो मंडे बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगता है, कठिन लगता है, ऐसा लगता है कि काश जिंदगी में बस आराम करना होता, काश हमेशा छुट्टी होती। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप जिंदगी में चाहते हैं कि कुछ अलग, कुछ नया, कुछ मुनफरिद करके बिताएं, सो कामयाबी तभी आपके कदम चूमती है जब आप मंडे से लेके फ्राइडे तक अनथक मेहनत करते हैं। एंड अ परफेक्ट मैन इज अ मैन हु मैनेज हिज वर्क लाइफ एंड हिज पीस। सो अगर आप संडे को, सैटरडे को इंजॉय करते हैं, वीकेंड स्पेंड करते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मंडे को काम करें। सो जब इस तरह की थिंकिंग आप सोचेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद ही मोटिवेट फील होगा और फिर आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि वाकई ही मुझे मंडे को लाजमी उठना चाहिए और अपने दिन का आगाज करना चाहिए। सो इसी मोटिवेशनल सी बात के साथ आगे बढ़ते हैं और आपके मेरे बीच में हाइल होने वाली है एक अदद कमर्शियल ब्रेक। सो इस कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, आपसे मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, बंधे रहें और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। We will be right back after a really short break, so stay tuned to the Fuzza 97.1 FM.
1: It's commercial time.
2: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant. Friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
3: Where is AMH Solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant! I will contact them to help my family's visa.
4: Sure, their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, immigration lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115 671 3677.

एंड वी आर बैक वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। टू द लिसनर्स, मैं हूं आप सभी की आरजे, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा। एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फजा 97.1 एफएम राइट नाउ विद योर फेवरेट शो दीवा डायलॉग। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रोग्राम में वक्त हो चुका है स्पाइस किचन की जानेब बढ़ने का, तो हर दिन की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सी चटपटी सी रेसिपी। सो आगे बढ़ते हैं माय लवली डिवास रेसिपी की जानेब। सो सबसे पहले आप गेस करिएगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। इट्स एशियन कुजीन या फिर है ये चाइनीज कुजीन। सो आप पे जोड़ देते हो, देखते हैं कि क्या आप ठीक गेस कर पाते हैं या नहीं। सो गेस कर लिया अगर आपने तो जल्दी से आंसर करिएगा 01157100971 इस नंबर पे। सो माय लवली डिवास एंड माय डियर लिसनर्स, जल्दी से अपनी नोटबुक कॉपी पेंसिल रेडी कर लीजिए क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हमारी आज की मेन रेसिपी के इंग्रेडिएंट। सो जस्ट इन केस अगर आपसे कुछ भी मिस हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि हम यहाँ आपके लिए हैं मौजूद। आप हमसे ये दोबारा भी बता सकते हैं सो दैट मैं उन तमाम चीज़ों को रिपीट कर दूंगी आप सभी के लिए। सो जी माय लवली डिवास, जितनी देर में आप रेडी करती हैं अपनी नोटबुक को, कॉपी को, पेंसिल को, उतनी देर में हम सुनते हैं ये खूबसूरत ट्रैक। सो ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर शेयर करूंगी आपसे आज की रेसिपी।

जी दोस्तों, सर लेट्स गेट बैक टू द रेसिपी। सो हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने गेस किया है कि आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज कुजीन। वेल, आपका जवाब है बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि ऑथेंटिक चाइनीज रेसिपी है। सो है भी बहुत ही मज़ेदार और डिलिशियस। सो आज है हमारी मेन रेसिपी हनी गार्लिक चिकन विथ क्रिस्पी वेजिटेबल्स। सो ये बहुत ही स्वीट सी खट्टी मीठी सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत डिलिशियस लगती है। एंड आई होप जब आप इसे ट्राई करेंगे तभी आपको रियलाइज होगा कि ये कितनी ही चटपटी रेसिपी है। सो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स जल्दी से आप नोट कर लीजिए। सो इस रेसिपी के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं, उसमें सबसे पहले 500 ग्राम बोनलेस चिकन बाइट साइज पीसेस, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून ऑल पर्पज फ्लोर, 1 अदद अंडा, 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सोया सॉस, कुकिंग ऑयल इतना आपने इस्तेमाल करना है जिसमें आप इसे इजीली फ्राई कर लें। अब बात कर लेते हैं उन सभी इंग्रेडिएंट्स की जिनके इस्तेमाल से आप बनाएंगे एक मज़ेदार सी स्वीट सी सॉस। सो सॉस के लिए हमें चाहिए 1.5 टीस्पून सोया सॉस, 1.5 टीस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून हनी, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टेबलस्पून विनीगर, 1 टेबलस्पून सेसमी सीड्स, 4 to 5 गार्लिक जिसे आप अच्छी तरह से कट कर ले, और आखिर में हमें चाहिए 1.5 कप वाटर। सो ये वो तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम रेडी करेंगे अपनी इस सॉस को।

अब इस रेसिपी के लिए जो जो वेजीज हमें चाहिए वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। सो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 1 स्मॉल कैप्सिकम क्यूब्स, 1 स्मॉल कैरेट थिन स्लाइसेस में, 1.5 कप कैबेज जिसे आप अच्छी तरह से कट कर लेंगे, 1.5 कप स्प्रिंग अनियन, लास्टली हमें चाहिए 1 स्मॉल अनियन पेटल्स में कटी हुई। अच्छा, किस तरह से हम इस रेसिपी को गार्निश करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए सेसमे सीड, स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा क्रश्ड ब्लैक पेपर। सो वेल लिसनर्स एंड माय लवली डिवास, ये थे वो सभी इंग्रेडिएंट जिनका इस्तेमाल करके हम बनाएंगे ये मज़ेदार सी रेसिपी। आई होप आप सभी ने इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे। वेल अगर आपसे कुछ भी हो चुका है मिस, तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आप हमसे 01157100971 थ्रू दिस नंबर आसानी पूछ सकते हैं। सो इंग्रेडिएंट्स तो हो गए, अब जरा मेन प्रोसीजर की जानिब बढ़ते हैं। सो इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमें एक साथ मिलता है क्रिस्पी चिकन, क्रंची वेजिटेबल्स और एक स्वीट स्पाइसी गार्लिक सॉस। यानी एक ही डिश में हम इतने सारे फ्लेवर्स को एंजॉय कर सकते हैं, तो वेल इट्स अ रियली ग्रेट डील। सो अब जरा प्रोसीजर को देखते हैं। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं। सो इस स्टेप में हम प्रिपेयर करेंगे चिकन को। हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 500 ग्राम बोनलेस चिकन और उसे बाइट साइज पीसेस में अच्छे से कट कर लेंगे। अब चिकन में शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून ऑल पर्पज फ्लावर, 1 अदद अंडा, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून सोया सॉस। अच्छा, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन के हर पीसेस की कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए। अब एक पैन में ऑयल गरम कर लेंगे, उसमें चिकन पीसेस को मीडियम हीट पर फ्राई कर लेंगे। हमें चिकन को बाहर से नाइसली क्रिस्पी और गोल्डन बनाना है, सो हम इसे बिल्कुल भी ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। चिकन फ्राई हो जाए तो इसे साइड पर आराम से रख देंगे। अब बारी आ जाती है स्टेप नंबर 2 की, वेजिटेबल्स। अब इसी कुकिंग ऑयल में हम शामिल करेंगे कलरफुल वेजिटेबल्स को। पैन में थोड़ा सा ऑयल मज़ीद शामिल कर लेंगे। सबसे पहले गार्लिक शामिल करेंगे। गार्लिक को सिर्फ कुछ सेकंड कुक करेंगे क्योंकि हम इसका फ्लेवर चाहिए, हमें इसे बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना। अब बारी आती है अनियन, कैरेट, कैप्सिकम और कैबेज को शामिल करने की। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, विच इज़ कि वेजिटेबल्स को आपने कभी भी ओवरकुक नहीं करना। चाइनीज स्टाइल डिशेस में वेजिटेबल्स में हल्का सा क्रंच बाकी रहता है, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जब आप कोई भी चाइनीज कुजीन ट्राई कर रहे हो तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो वेजेस हैं वो ओवरकुक ना हो, थोड़ी थोड़ी क्रंची हो। सो स्टेप नंबर 3 में अब बारी आ जाती है स्पेशल सॉस की, ठीक है। अब स्पेशल सॉस किस तरह से हमने रेडी करनी है, हनी गार्लिक सॉल्ट। इसके लिए हम एक बाउल ले लेंगे जिसमें हम शामिल करेंगे 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून हनी, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टीस्पून विनीगर एंड 1 टीस्पून सेसमे सीड्स। इस मिक्सचर को अच्छी तरह से हम कंबाइन कर लेंगे। अब इसी सॉस वेजिटेबल वाले पैन में हम शामिल करेंगे और साथ में हम अराउंड 1/2 कप पानी मज़ीद इसमें डाल देंगे। मिक्सचर को शिमर होने देंगे। अब आपकी किचन में गार्लिक सोया सॉस और हनी की जो खुशबू आ रही होगी, ऑनेस्टली वो आपकी भूख को बढ़ा देगी। सो मेक श्योर करना है आपने कि ज़रा दिल थाम के रेसिपी को ट्राई करना है। सो अब हमारी सॉस तो रेडी हो गई। सो फाइनली अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 की जानिब। सो स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, क्रिस्पी चिकन वापस पैन में शामिल कर लेंगे, ठीक है। चिकन और सॉस और वेजिटेबल्स, इन तीनों को अच्छी तरह से जेंटली एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेंगे। इतना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि हर पीस अच्छे से कोट हो जाए। सिर्फ 1 से लेकर 2 मिनट तक टॉस करेंगे। हमें चिकन के क्रिस्पी टेक्सचर को कम्प्लीटली सॉगी नहीं करना, सो आपने मेक श्योर करना है कि बिल्कुल भी सॉगी ना लगे आपकी रेसिपी। एंड टडा, वी रेसिपी आर रेडी। अब हम फाइनल टच देंगे इसे, ऊपर से ऐड करेंगे फ्रेशली चॉप्ड स्प्रिंग अनियंस, थोड़ा सा सेसमी सीड एंड दैट्स इट। हमारी हनी गार्लिक चिकन विद क्रिस्पी वेजिटेबल्स हो गई बिल्कुल तैयार। अब आप इसे स्टीम राइस के साथ
फ्राइड राइस के साथ या फिर नूडल्स के साथ सर्व कर सकते हैं। स्वीट हनी सॉल्टी सोया सॉस गार्लिक का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, हल्का सा चिली केक और क्रंची वेजिटेबल, ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली ट्राई करने के काबिल है। सो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मैं तो आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि लाजमी आप आज इस रेसिपी को ट्राई करें। वेल, अगर जल्दी जल्दी में कोई भी पॉइंट हो चुका हो आपसे मिस, तो घबराने की कोई बात नहीं, आप सिंपली मुझे टेक्स्ट कर सकती हैं 01157100971। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकती हैं, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकती हैं और मुझे बता सकती हैं। सो मैं मेक श्योर करूँगी कि अगर आपकी कोई भी क्यूरी है आज की रेसिपी से रिलेटेड तो मैं उसे दूर करूँ। वेल, हमारे बहुत सारे लिस्टर्स ऐसे होंगे जो कि चाइनीज़ फूड लवर होंगे, तो अगर आप कोई भी ऑथेंटिक चाइनीज़ रेसिपी घर पर ट्राई करना

सुबह लिसनर्स, इसी तरह की प्यारी प्यारी सी फरमाइशें हमें भेजते रहा करिए. साथ ही साथ आज की रेसिपी को ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक क्लास में भेजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें मोटिवेट करता है, उम्मीद दिलाता है कि हम हर दिन आपके लिए कुछ नया लेकर हाजिर हों.

हमारे पास टाइम कम था, सो मैंने कोशिश की कि हम इसे थोड़ा शॉर्टली शॉर्टली आपके साथ एक्सप्लेन कर दें। बाकी ये कि प्रोग्राम ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन आपका दिन, आपकी सुबह अभी बाकी है, सो आपने कोशिश करनी है माई लवली डिवास के इस मंडे को आपने बनाना है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लस प्रोडक्टिव, क्योंकि जब तक आप कोई ना कोई काम करते रहते हैं तब तक आप खुश रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम काम करना छोड़ देते हैं तभी हम ओवर थिंकिंग स्टार्ट करते हैं, और जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं वहीं से ही मोस्टली प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आप सबने। मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दे इजाज़त। टीमर डायलॉग का ये सफ़र हुआ जाता है ख़त्म। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते आप सभी के लिए एक अदद खूबसूरत सा ट्रैक प्ले कर देती हूँ, और इस ट्रैक को एंजॉय करें और मुझे अलविदा करें। टेक केयर, बाय बाय।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए। सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

सवाल इसी के साथ साथ चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज की, आज के लंच के हवाले से। कुछ लोगों के लिए लंच का मतलब ये है कि घर का गरम गरम खाना, कुछ लोग ऑफिस में लंच बॉक्स लेकर जाते हैं, कुछ लोग बाहर से खाना ऑर्डर करना पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लंच के वक्त सोच रहे होते हैं कि क्या खाया जाए। अच्छा, ये सवाल आसान बहुत लगता है लेकिन रोज़ाना ये फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आज खाने में क्या खाया जाए। ऊपर से फिर जब ऑफिस में आ जाओ तो फिर काम कर करके एक तो हमें बंदगी की मतवज जाती है और फिर खाना भी खाना, भूख भी लगनी और फिर समझ भी नहीं आना कि यार खाना खाए क्या। अच्छा, मुझे नहीं पता लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि मैंने सुना है कि जब किसी को भूख लगती है तो या तो आपको गुस्सा आने लग जाता है या फिर आपका सर दर्द होने लग जाता है। सो आप मुझे बताइएगा कि जब आपको भूख लगती है और जब आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आज लंच में क्या खाया जाए तो आपकी क्या कंडीशन होती है उस टाइम पे। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं सुबह नाश्ता ये किया था, अब लंच में क्या खाया जाए, रात के खाने में क्या होगा। फिर अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस चीज़ को वाकई सोचते हैं कि यार आज सुबह हमने ये खाया तो अभी मतलब नवाला मुंह में रखा ही है तो साथ ही टेंशन पड़ जाती है कि दोपहर के खाने में हम क्या खाएंगे। और जब लंच करने लग जाते हैं और फिर लंच के बाद हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि यार रात के खाने में क्या क्या होगा, रात को क्या खाया जाए। ऐसा और अगर घर में बहुत से लोग हों यानी कि कई लोग हों तो फिर हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को बिरयानी चाहिए होती है, किसी को सब्जी चाहिए होती है, किसी को चावल और किसी को पसंद की चाय और पसंद ही चाय भी बस इस तरह से हो कि साथ में बिस्किट भी हो। सर तो आज आप बताइएगा कि आपका फेवरेट लंच क्या है। खाना सिर्फ भूख मिटाने का नाम नहीं होता, खाने के साथ हमारी बहुत सी यादें भी जुड़ी होती हैं। अम्मी के हाथ के खाने की खुशबू, दादी या नानी के हाथ के बने हुए पकौड़े,

अच्छा कभी कभार ऐसा होता है गाइस सामीन के कभी कभार कुछ खाने ऐसे होते हैं कि जो हमें जिनको हम चखते हैं या जिनकी खुशबू हम लेते हैं, तो वो होते साथ मतलब चखते साथ इंसान जो है ना वो बरसों पीछे चला जाता है। कभी एक खुशबू हमें किसी पुरानी याद की तरफ ले जाती है, और इसीलिए जो है ना शायद घर के खाने का जायका कहीं और नहीं मिलता। खैर मतलब आपके साथ गपशप का सिलसिला जारी रखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी, वैसे आज का हमारा टॉपिक था कि आई डोंट नो, मुझे भी भूल गया, बट मैं आपको बताती हूँ आज का जो हमारा टॉपिक मैंने डिसाइड किया था। हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक था टेम्परेरी पीपल, आरजी लोग। मतलब आरजी लोग वो होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वो सिर्फ आपको जो है कुछ सिखाने, समझाने, आपको मजबूत बनाने, या आपके लिए आपके किसी ख़ास वक्त का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। सामीन ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बज़ाहिर अपने नहीं लगते लेकिन हमेशा साथ रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लगते हैं और साथ नहीं रहते लेकिन वक्त के साथ जो है ना वो चले जाते हैं, और जब जो वो जाते हैं तो दुख होता है। लेकिन सच ये है कि हर कोई जो है वो मुस्तकबिल के लिए नहीं होता, और कभी कभार जो है वो जाना पड़ता ही है हर किसी को। अच्छा मैं पर्सनली आपको एक बात बताऊं अपनी तरफ से कि आरजी लोगों की ना तीन निशानियां मैंने जो नोटिस की हैं, आरजी लोग जो होते हैं मतलब तक साथ रहते हैं, वक्त बदलते ही जो है वो बदल जाना, और साथ में याद जो है वो सिर्फ तब आती है जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। सो मतलब तक साथ, जब तक उनको आपकी ज़रूरत होती है ना तब तक वो आपके जो है सबसे अच्छे दोस्त बने रहते हैं, लेकिन जब भी जैसे ही उनको आपकी ज़रूरत नहीं रहती तो फिर वो आपको नज़रअंदाज करना, बिज़ी होना, फिर उसके बाद आपको इग्नोर करना, फिर से आपको पता चल जाता है, और ये चीज़ लेट ही पता चलती है हर इंसान को। आपके हर बुरे वक्त में जो है वो सबसे पहले जो साथ छोड़ देते हैं ना, जब उनका अपना मतलब निकल जाता है तो फिर वो आपका साथ छोड़ देते हैं। याद जो है वो सिर्फ तभी उनको आती है जब उनको आपकी ज़रूरत होती है, तो वो आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उनको कोई काम होता है आपसे। सो हमें क्या करना चाहिए सामीन, के आरजी लोगों के साथ के जाने पर जो है ना वो रोना नहीं चाहिए, उनका शुक्र अदा करें। उन्होंने आपको इतना कुछ सिखाया, और उन्होंने आपको ये भी सिखाया कि किसी पर भरोसा करना है और किस पर भरोसा नहीं करना। उन्होंने आपको मजबूत बनाया, ये बताया कि देखने वाली हर चीज़ जो है वो सोना, वो क्या कहते हैं ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, जिसको हम सोना समझ के बैठ जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सोना वाकई जो है वो सोना ही हो। खैर आप गपशप का सिलसिला जारी रहेंगे, लंच बॉक्स को आपके साथ शेयर करेंगे, प्रोग्राम में मेरा आपका साथ रहेगा ठीक हो ठीक 2 बजे तक। और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ, इस ट्रैक के उस पार मेरी रहेगी आपसे मुलाकात। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मैं अपने प्रोग्राम में ऐसी चीज़ें आके शेयर करती हूँ जो मैं वीकेंड पे जो भी एक्टिविटी मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ आके शेयर करती हूँ, या फिर मैं कोई ट्रैक ऐसा सुन लूँ जिसको मैं बार बार सुनती हूँ, फिर मेरी कोशिश रहती है कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो टॉपिक भी मैंने जो है वो काफ़ी टाइम से सोचा हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक के साथ साथ ये ट्रैक है उसको फिर ग्राम शाम करूँ, उसके रिलेटेड इससे मिलता जुलता।

आप भी सोचते होंगे कि अभी तक ट्रैक शामिल नहीं हुआ। मेरा सबसे बड़ा मसला यही है कि मुझे जो है ना वो ट्रैक ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो वेल मतलब मैं उस तरह की हूँ कि मैं पहले से हर चीज़ को तैयार नहीं करके रखती, लेकिन रैंडम चीज़ें हैं वो हमेशा ही अच्छी लगती है, प्योर चीज़ें हैं वो हमेशा अच्छी लगती है। सो वेल अभी प्रोग्राम में इस ट्रैक को शामिल करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के रिलेटेड है, उस टॉपिक के हवाले से है। सो वेल आइए सुनते हैं इस ट्रैक को। इस ट्रैक के इस पर मेरी रहेगी आपसे मुलाकात, और स्टे ट्यून फजर 97.1 FM एंड ऐप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 107.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। एक बार फिर से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च वाज आप सुन रहे हैं सर आज की जहाँ पर मेरा आपका हमारा साथ आया था ठीक ठीक 2 बजे तक। सो उसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था और ये हमारा जो आज का टॉपिक है उसके रिलेटेड था और मेरे ख्याल में आपको पसंद भी आया होगा और आपने बातों को समझा भी होगा, क्योंकि बहुत से ट्रैक ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, जिनको समझा भी जाता है। और मेरे ख्याल से हर ट्रैक के पीछे कोई ना कोई ऐसी वजह होती है जिसको समझा जाए, लेकिन हम लोग जो है उसे सुनने की हद तक उसको सुनते हैं। खैर अभी अब ज़रा बात करते हैं हम हमारे जो है वो, हम तो है यहाँ पे आके बस गए और जो हमारा पहले जो हमारे टाइम थे, पहले पहले जो हमारा दौर था जब हम यहाँ पे नहीं बल्कि अपने घर में होते थे, अभी भी हमारा घर ये है लेकिन तब हम मतलब पाकिस्तान में होते थे। तो अब ज़रा अगर बात की जाए हमारे पाकिस्तानी खानों की, तो वहाँ के खानों का क्या टेस्ट था। सो वहाँ पर तो बिरयानी ज़्यादातर खाई जाती थी और हर घर में बिरयानी ही ज़्यादा मशहूर होती थी मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे लगता है। सो सामीन, अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूँ कि अगर आपके सामने दो ऑप्शंस रखे जाएं कि घर का खाना या फिर बाहर का खाना, तो घर के खाने की जो है वो तो अपनी बात होती है और बाहर के खाने की भी अपनी बात ही होती है, लेकिन अगर मैं आपके सामने ये सवाल रख दिया मैंने, अगर आप में से आपको इन दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़े तो आप किस चीज़ को चूज़ करेंगे, घर के खाने को या बाहर के खाने को। घर के खाने की बात की जाए ना तो वो ताज़ा खाना होता है, मतलब बाहर का भी ताज़ा ही होता है यार, लेकिन ताज़ा खाना होता है, अपनी पसंद के मुताबिक मसाले डाले जा सकते हैं और घर का माहौल जो है और अपनों के हाथ का जायका, इसका कोई अलग ही टेस्ट होता है। मतलब खाने घर का खाना जो है ना उसमें कोई जायका नहीं होता, उसमें अपनों का प्यार होता है, घर वालों का प्यार होता है। सो लेकिन बाहर के खाने की बात की जाए तो बाहर के खाने का भी अपना एक मज़ा है, दोस्तों के साथ बैठना, नई जगह ट्राई करना, और वाकई में नई जगह ट्राई करने से जाना बहुत से एक्सपीरियंस बंदे को आता है और मुख्तलिफ जो है ना टेस्ट वगैरह उनको चेक करना कि बाहर का ये टेस्ट कैसा। अच्छा मुझे बताइएगा कि अगर आपने कभी सोचा हो कि आज हम बाहर से ये ट्राई करेंगे, मतलब आपने फर्स्ट टाइम उस चीज़ को खाना हो, टेस्ट करना हो, तो अगर आपने उसको टेस्ट कर लिया और टेस्ट कर लेने के बाद आपको वो उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिला जिस तरह का आपने सोचा था कि इसका टेस्ट इस तरह का होगा, और अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली तो फिर आपका रिएक्शन क्या था। ज़्यादातर बाहर के खानों का यही होता है कि मुख्तलिफ जो है वो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं, फिर उधर जो है वो यही पूछा जाता है, यही कहा जाता है कि भाई वो फलां जगह का जो है वो बर्गर ट्राई करेंगे, वहाँ का जो है वो पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे, वहाँ का जो है वो शवारमा ट्राई करेंगे, वहाँ की जो है वो तंदूरी चिकन वहाँ का ट्राई करेंगे, और इसी के साथ साथ फिर ऐसी ढेरों बातें जो है ना निकल आती हैं। हर रेस्टोरेंट्स का जो है वो अपना अपना जायका होता है, अपना अपना उनका होता है सारा सीन, लेकिन हम लोग जो है ना इस चीज़ को चेक करते हैं, उनको पास करते हैं। असल मज़ा तब आता है जब खाना भी जो है वो अच्छा हो और कंपनी भी हो। अब डिपेंड करता है कि जब आप कहीं पे खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे ना सिर्फ जायका अच्छा हो बल्कि वहाँ की जो वो मैनेजमेंट होती है वो भी आपके साथ सही हो।

सो दोस्तों, दोपहर का वक्त है और खाने का वक्त है, तो फिर खाने का वक्त अगर आ गया तो फिर हम लोग जो है वो साथ साथ खाना एंजॉय करते हैं, और साथ में जो है वो एक ट्रैक प्ले कर देते हैं। फिर इस ट्रैक के उस पर मेरे आपके दरमियान हायल होगी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, उस पर मेरी रहेगी आपसे मुलाकात। और स्टे ट्यून्ड फॉर 107.1 FM एंड ऐप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: It's commercial time.
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
6: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
11: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
10: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
11: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
10: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते की समातों को रेडियो पर 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक ठीक 2 बजे तक। सो उसी के साथ साथ प्रोग्राम में एक ट्रैक शामिल किया था, और साथ में जो है वो एक कमर्शियल ब्रेक भी आ रही थी, और कमर्शियल ब्रेक इस बार में रही आपसे मुलाकात। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा उसके हवाले से डिस्कस करते हैं, फिर लंच बॉक्स को मजीद आगे लेकर चलेंगे। अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेरी पीपल, आर्जी लोगों के बारे में डिस्कस की जा रही है। सो अगर बात की जाए आर्जी लोग क्यों आते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो अभी के बारे में देखा जाए तो सबक देने के लिए जो है आपकी ज़िंदगी में ऐसे वैसे लोग आते रहते हैं। कुछ लोग आपको दुख देने नहीं बल्कि आपको सिखाने के लिए आते हैं, बल्कि ये सिखाते हैं कि आप अंधा भरोसा आपको नहीं करना चाहिए किसी पर भी। वो कहते हैं ना कि जब आप पे कोई भरोसा करता है तो आप उसको अंधा ही ना समझ लें। और कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में यूं भी आते हैं कि वो आपको ये सिखाना चाहते हैं, कदर सिखाना चाहते के लिए आते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या कदर होनी चाहिए। इस वक्त जब वो आपको छोड़ते हैं तब आपको अपनी अहमियत का पता चलता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने आप को हमेशा हमेशा फर्स्ट पर रखें, क्योंकि जब हम अपनी कदर कर सकते हैं ना तो फिर और कोई चीज़ चाहिए ही नहीं मेरे ख्याल में। आपको मजबूत बनने के लिए जो है उन लोगों के जाने के बाद आपको मजबूत बनने से ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद पहले से ही समझदार और मजबूत बन जाएं। देखिए सामीन, हम जो है ना वो हर किसी को अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रोक कर नहीं रख सकते। कुछ लोग जो है वो चाय के लिए जो है वो एक कप की तरह होते हैं, और चाय के लिए एक कप की तरह होते हैं, थोड़ी देर के लिए जो है वो सुकून देते हैं और फिर जो है वो ख़त्म हो जाती है, और हमें जो है उनको जाने देना चाहिए। और जब चाय ख़त्म हो जाती है तो फिर कौन सा मज़ा भाई। कुछ मज़े जो है वो काफ़ी वाकई सही कहते हैं, थोड़ी देर के लिए ही होते हैं। सो अगर देखा जाए अगर आर्जी लोग मुझसे जो है ना प्रोग्राम में टॉपिक के वास्ते जो है एक सवाल किया गया, और मैं इस सवाल को जो है मज़ीद आगे लेकर चलूँगी, लेकिन सवाल कुछ इस तरह से मुझसे किया गया है। कि अगर कोई आर्जी शख्स आपकी ज़िंदगी से चला जाए तो क्या करना चाहिए। सो उसके जाने पर जो है मैं ये कहूँगी कि उसके जाने पर खुद को कसूरवार ना ठहराएं, उसकी अच्छी यादों को रखें और बुरी यादों को जाने दें। अब फिर वही बात आ गई कि अगर आपके साथ कोई अच्छी याद हो ही ना तो फिर आपने बुरी यादों को ही लेकर चलना है। खैर कहीं ना हम लोग बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक इंसान की एक अच्छा एक बुराई के पीछे 100 अच्छाइयाँ भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अच्छाइयों को भूलना पड़ता है, वो जो आपको ठुकरा कर दूसरों की तरफ जाते हैं। उनको याद रखना भी मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है, अच्छी तो क्या बुरी तरह से भी याद रखना ज़रूरी नहीं है। अपने मुस्तकबिल जो है वो सवारें, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने आने वाले रिश्तों के साथ, उन रिश्तों के साथ जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, जो आपको हर अच्छी बुरी चीज़ के साथ कबूल करेंगी, उन रिश्तों के साथ अपने आप को सही से रखें। सो समीन, अगर आपकी ज़िंदगी से कोई आर्जी शख्स चला गया ना तो उसे तो है उसे जाने दें, उदास नहीं होना, आपने मुस्कुराना है और कहना है कि शुक्र है कि वो चला गया। सो अगर कोई चला गया तो चले जाने से ज़िंदगी नहीं रुक जाती, मैं फिर से यही बोलूँगी। सो ज़िंदगी नहीं रुकती तो फिर इसी तरह लंच बॉक्स भी ख़त्म हो जाता है। लंच बॉक्स अगर ख़त्म हो गया तो कुछ और भी खाने के लिए मंगवा लें, या फिर कॉफ़ी का जो है ना वो हल्का सा एक कप जो है वो चलेगा, अगर कॉफ़ी नहीं तो चाय, चाय नहीं तो कॉफ़ी। हाँ, अगर अभी भी भूख लगी हुई है तो हम जो है वो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, ऑर्डर करके फिर मिलकर बैठ के खाएंगे, क्या कहते हैं आप। क्योंकि अभी हम डिस्कस करते हैं खाने के हवाले से भी कि खाना जो है वो बहुत से खाने ऐसे होते हैं जिनको खाने के बाद जो है वो इंसान को बहुत सी ऐसी मेमोरीज याद आ जाती हैं, पुराना गुजरा हुआ वक्त याद आ जाता है, उस टाइम पे जो है वो इकट्ठे हुए पुराने ज़माने में, तो पहले वाला जो टाइम था, पुराना ज़माना नहीं कहते, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। हम बात करते हैं कि जो पहले वाला टाइम था ना उसमें कुछ यूं से होता था कि हम लोग सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे, एक अलग सी दुनिया बसती थी, एक अलग सा माहौल होता था कि यार मतलब एक बंदा भी अगर दस्तरखान पे नहीं है तो खाना शुरू ही नहीं करना। और अभी जो है वो ये सीन हो गया कि लोग जो है वो काम करते हुए भी खाना
खाना खाते हुए भी काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ़ोन से खाना खा के गुल हो जाते हैं कि यार जाके फ़ोन से अपने काम करना, ये क्योंकि मीटिंग आ जाती है। सो वो पुराने टाइम को याद किया जाए ना, तो वो टाइम काफ़ी अच्छा था, इकट्ठे बैठ के खाना खाना, जायकों को टेस्ट करना, एक दूसरे की प्लेट में से उठा के चीज़ को खाना, और फिर एक दूसरे से गिलास खींच खींच के पानी पीना, और इसी के साथ फिर उसके बाद जो वो मस्त सी डांट पड़ती थी ना, उसका एक अलग ही मजा आता था। और जब तक वो डांट पड़ नहीं जाती, जब तक ये मस्तियाँ नहीं हो जानी, जब तक वो डांट नहीं पड़ जानी ना, तब तक जो है वो खाने का मज़ा आता ही नहीं था। सवाल सामीन, इसी के साथ साथ जिन लोगों ने आज और अभी फजल 97.1 FM को ट्यून किया, बेहद शुक्रिया आप तमाम नई समातों का। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका अगर आपको बता देते हैं, नंबर बड़ा ही प्यारा सा है, नंबर इज 01157100971। इस नंबर को कीजिएगा सेव, सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रोग्राम को आगे लेकर डिस्कस करेंगे। अभी मेरे पास एक छोटी सी फरमाइश भी मौजूद है, अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम उसको प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि प्रोग्राम में जो है वो अच्छे अच्छे ट्रैक शामिल किए जाए, दुखी ट्रैक को जो है वो लेकर ना ही चला दे, क्योंकि अगर माहौल जो है वो सेंटीमेंटी हो गया तो फिर उसको सेट कैसे करूँगी मैं। है सेट तो हमें बहुत अच्छे से करना आता है लेकिन अभी जो है वो हम कोशिश यही करते हैं कि ट्रैक जो है वो अच्छे अच्छे शामिल करें। झलकते पड़ते ट्रैक अगर शामिल होंगे ना, तो आपकी याद जो है वो और अच्छे से आएंगी आपको। अच्छा, मैं कल एक ट्रैक सुन रही थी, थोड़ा फादर से रिलेटेड था, और मैंने सोचा कि मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी जो है मंडे वाले दिन, बट मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी नहीं, हमारा लास्ट सेगमेंट हो गया म्यूज़िक का, म्यूज़िक के उस सेगमेंट में आपके साथ उस ट्रैक को शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना बता देते हैं कि अगर आप किसी भी आरजे की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी भी प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पर करता है, सब लोग आपको कहाँ से मिलेगी जी, हम आपने जाना है गूगल पर, गूगल पर जाकर सर्च करना है radiofaza.co.uk, आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है। और अगर कोई आपको आरजे मनपसंद है तो आप उसको उनके रिलेटेड हमें उनको मैसेज भी कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, अपनी पसंद का इजहार कर सकते हैं। सो वह उसी के साथ साथ जो है वो मेरे ख्याल में मुझे प्रोग्राम में ट्रैक शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहले आप मुझे बताएं, क्योंकि मेरा तो दिल कर रहा है कि इस लंच बॉक्स को इतना लंबा लेकर चलूँ ना कि लंच ख़त्म हो जाए, लेकिन बॉक्स जो है ना हमारे साथ ही रहे। सो वेल मिलकर हम ओपन करते हैं इस लंच बॉक्स को, जिसमें ना सिर्फ खाना होता बल्कि बहुत सी ऐसी बातें छुपी होती हैं जो आपने हम तक पहुँचानी होती हैं उसमें, ना सिर्फ खाना बल्कि एहसास, जज्बात और वो ठगी छुपी बातें जो आपने वीकेंड पर मेरे लिए संभाल के रखी होती हैं। क्योंकि मैं भी जो हूँ वीकेंड के बाद आती हूँ तो आपके साथ ही बातें आकर शेयर करती हूँ। वो कहते हैं ना कि हर शख्स नहीं होता हर बात के काबिल, हर शख्स को हर बात बताया नहीं करते। सो आप भी मेरी तरह होंगे कि मैं अपनी बातें आपसे शेयर करती हूँ और आप अपनी बातें मुझसे शेयर करते हैं। आप अपने खूबसूरत से टाइम में से मेरे लिए 2 घंटे का टाइम निकालते हैं, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। सो बेहद शुक्रिया आप तमाम समातों का, प्रोग्राम में शामिल होने का, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने का और हमें सपोर्ट करने का। अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तभी जो है वो हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करते रहेंगे। आपकी जो खूबसूरत मैसेजेस होते हैं, आपकी जो गपशप होती हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो मैं आपकी राय जो होती है मैं प्रोग्राम में शामिल करते हैं हम, तभी जो है हमारा प्रोग्राम वो और ज़्यादा अच्छे से जो है वो चलता है। और इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने में भी आपका ही हाथ है। अगर आप लोग हमें जो है वो फीडबैक नहीं देंगे तो फिर हमारा शो करने का जो मकसद है वो नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर प्रोग्राम में किसी ने भी मेरी बात पर अमल कर लिया, मेरी प्रोग्राम में किसी भी बात पर अमल कर लिया, तो मैं समझूंगी कि मेरा प्रोग्राम करने का जो मकसद है वो पूरा हो चुका। सवाल इस मकसद को आगे लेकर चलेंगे, लंच बॉक्स को मजीद आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए लंच बॉक्स में जो है वो एक नीचे वाले टिफिन में से जो है ना मैंने एक बड़े खूबसूरत सा ट्रैक निकाला है, इसमें इनकी फरमाइश आई है, सो इस फरमाइश के प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं। इसके उस पार मेरी रहेगी आपसे मुलाकात, और स्टे ट्यून फजल 97.1 FM एंड डैप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

आपका साथ आता है ठीक ठीक 2 बजे तक। और उसी के साथ साथ ब्याह में एक छोटा सा खूबसूरत सा ट्रैक शामिल किया था खूबसूरत सी फरमाइश पे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रैक पसंद भी आया होगा। सवाल उसी के साथ साथ लंच बॉक्स को आके लेकर चलेंगे। देखिए लंच बॉक्स में जो है एक खूबसूरत सा सवाल हम तक पहुँचा गया है कि आपने ब्याह में जो टॉपिक शामिल करवाया है इज अमेजिंग, और मेरी तरफ से जो है वो एक छोटा सा मैसेज ब्याह में शामिल करवाइएगा इस टॉपिक के हवाले से। जी ज़रूर करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, हम यहाँ रहते ही आपकी सुनने के लिए हैं। सो पूछा गया है कि कहा गया नहीं मुझसे पूछा गया है कि क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा शख्स आया जो थोड़े वक्त के लिए आया और लेकिन आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा कर गया। मतलब आपने मुझसे ही सवाल कर दिया। सो हम आपके सवाल का जवाब देंगे। आपने भी सोचा होगा कि सलूर आज हमसे सवालात कर रही हैं, तो क्यों ना हम भी एक छोटा सा सवाल उनके सामने रख देते हैं। खैर देखिए हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स ज़रूर आता है जो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और उसके बाद जो है वो इंसान एक पत्थर दिल बन जाता है। सो मैं नहीं सिर्फ सबकी ज़िंदगियों में आता है, और जो है वो मेरे ख्याल में ये आना ज़रूरी भी है, ये चीज़ होनी ज़िंदगी में ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में समझदार या किसी अच्छे मुकाम पर अपने आप को पाना चाहते हैं तो आपको एक ठोकर जो है वो लाजमी लगेगी, और वो अब दोस्ती की हो प्यार की हो किसी भी चीज़ की हो इसका मुझे आइडिया नहीं है। हाँ इतना मुझे पता है कि जो आर्जी लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं ये आपको हमेशा के लिए एक सबक दे जाते हैं, और फिर आपको याद रहता है कि भाई उस टाइम पर ये चीज़ हुई थी, तो आगे भी हम इस चीज़ से एहतियात करते हैं। सुबह मेरे प्यारे सुनने वालों, मेरे तमाम सामीन, जो चला गया उस जो है मुस्कुरा कर अलविदा कहें, और जो आपके पास है उसकी कदर करें, क्योंकि ज़िंदगी में जो है वो भीड़ जो है बहुत है लेकिन लोगों को आना जाना लगा रहता है, मगर अपने जो है वो अपने चंद लम्हात अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत चंद लम्हातों को उस इंसान के साथ गुजारें जो आपकी कदर करता है। सो इसी के साथ में मुझे एक शेर भी याद आ गया कि वो जो आया था कभी दिल के करीब अब वही शख्स सबसे दूर लगता है।

सो ऐसे तजुर्बात जो है ना वो हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। सो जिस तरह अब हम किसी कहीं पे कोई नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है और उस रेस्टोरेंट में कभी कहीं हमने कोई खाना ट्राई करना है, कोई चीज़ ट्राई करनी है, मंदी ट्राई करनी है या कुछ भी देसी फूड, तो पहले हम ये सोचते हैं कि आई डोंट नो कि इसका जायका कैसा होगा, आई डोंट नो कि ये अच्छी होगी भी या नहीं होगी। लेकिन कभी कभार जो है वो आपका तजर्बा ठीक भी निकल आता है और कभी कभार ऐसा होता है कि आपको वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, आपकी तवक्कुआत पर वो पूरा नहीं उतर पाती उस तरह से, लेकिन फिर भी आपको खाना पड़ता है। क्यों खाना पड़ता है? क्योंकि आपने पैसे लगाए होते हैं। सो जहाँ पर पैसे लगे हो ना वहाँ पर जो है वो फिर खाना ही पड़ता है। वो कहते हैं कोड़ा कूट करके बंदे को गाड़ी लाना चाहिए, गाड़ी लेंदा करके। सो सामीन बताइएगा कि वीकेंड पे कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, कहाँ पर गए, जो नई जगह ओपन हुई, कोई रेस्टोरेंट ओपन हुआ या कोई छोटा सा फूड स्टॉल ओपन हुआ जहाँ पर आपने सोचा कि यार यहाँ पे जो है वो ये चीज़ खानी है, इसकी ये चीज़ टेस्ट करनी है। तो अगर आपने टेस्ट किया तो आपका क्या मतलब उसके बाद क्या रिएक्शन था आपको, वो चीज़ खाने में कैसी लगी आपको? अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फूडी होते हैं, जिनको बहुत से ज़्यादा जो है वो होता है कि भाई ये भी चीज़ ट्राई करनी है, ये भी ट्राई करनी है। और आपस की बात है कि मैं भी शायद उन्हीं में से हूँ। हम लोग जो है अक्सर फ़ोन स्क्रॉल करते हैं ना सामीन, तो फ़ोन स्क्रॉल करते हुए अक्सर जो है वो खाने की चीज़ें आती रहती हैं और फिर दिमाग भी एक ऐसी चीज़ है ना कि वो उसको इग्नोर ही नहीं कर पाता, वो उसको देखता है, बिल्कुल देखता है। और जब हम उसको देखते हैं फिर वो कहते हैं ना कि जब एक चीज़ को वॉच करो तो वो चीज़ बार बार आती है, फिर वो खाने की चीज़ें बार बार आना, बार बार आना, फिर वो जो है ना देख देख के इंसान का दिल करता है कि हाँ मैं ये भी चीज़ ट्राई करूँगा, ये भी ट्राई करूँगा। और इसी तरह से जो है वो फिर एक्सपीरियंस बढ़ता है कि इंसान कहता है कि यार मैंने फलां जगह की ये चीज़ ट्राई की थी और बहुत मज़े की थी, लेकिन उसमें खाने वाले घर का जायका नहीं था। अच्छा, पहले ये कहा जाता था, पहले नहीं मेरे ख्याल में अभी भी ये चीज़ें शायद कही जाती हूँ कि जब आप बाहर से कुछ खाने के लिए मंगवा लेते हैं तो उसके बाद खाने के बाद ही कहा जाता है कि अच्छी वाली जो अच्छा वाला जो है वो किलो एक चिकन मंगवाया होता तो घर में अच्छी सी बिरयानी बना के दे देते, लेकिन मेरे ख्याल में हर घर का ये किस्सा होता है। और सामिन बहुत से लोग हमारे दरमियान ऐसे भी होंगे या होते हैं इस तरह के कोई चीज़ ट्राई कर लेने

बाद खा लिया और उसके बाद फिर सोचा कि काश ये चीज ना खाई होती, काश ऐसा ना होता. सो काश को साइड भी कर दिया. अगर आपने एक दफा उस चीज को टेस्ट कर लिया, पैसा लग गया, तो भाई अपने ऊपर लगाए हुए पैसे को आप फजूल मत समझे, जाया मत समझे कि आपने जाया कर दिया उस चीज को या पैसों को जाया कर दिया आपने. एक्सपीरियंस जो है ना वो जिंदगी में चलता रहता है. सो अभी जो है वो प्रोग्राम में एक ट्रैक की भी फरमाइश मेरे पास है और अभी कमर्शियल ब्रेक का भी समय होने वाला है, तो फिर यही करते हैं कि आपके साथ गपशप तो हमारी चलती ही रहेगी, बट अभी जो है वो प्रोग्राम में एक ट्रैक को शामिल कर देते हैं.

अच्छा, मैंने आपके साथ डिस्कस भी करना था कि मैंने जो है ना अभी शायद रिसेंटली एक मूवी आई है भूत बंगला, और मैंने काफ़ी सुना उस मूवी के बारे में कि मूवी बड़े मज़े की है, बहुत मज़े की है। मेरे ख्याल से कि उसका 3 के 4 सीज़न आया है, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है सही से, बट मैंने उसको देखा, इट्स वेरी फनी, बहुत फनी मूवी है। आप उसको देखिएगा, आप तुम उसको देखेंगे ना तो क्या ही मज़ा आने वाला है। अब अभी तो नहीं आप देख सकते क्योंकि ये पूरा वीक जो है वो बिजी गुजरने वाला है कामकाज की तरफ, और वीकेंड पे जो है उस चीज़ को जरूर देखिएगा। अगर आपको याद ना रहा तो मैं वीकेंड पे जाने से पहले जाना फ्राइडे के दिन आपको ज़रूर याद करवा दूँगी।

फिर क्या कहते हैं कि बढ़ते हैं एक ट्रैक की जानिब। इस ट्रैक के उस पार मेरे आपको दरमियान हायल होगी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, और फिर कमर्शियल ब्रेक के बाद रहेगी आपसे मुलाकात। ट्रैक शाम के सैयारा मूवी से लिया गया ये ट्रैक बर्बाद सॉन्ग। इस ट्रैक को सुनते हैं इस ट्रैक के उस पार मेरी रहेगी आपसे मुलाकात। और स्टे ट्यून फजल 7.1 FM एंड ऐप, साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज आप सुन रहे हैं आज की शाम पर, मेरा आपका साथ रहता है ठीक 2 बजे तक। सर सामीन, बातों के साथ साथ एक घंटा आपके मेरे दरमियान गुजर चुका है। अभी जो है वो अगला घंटा हमारा स्टार्ट हो चुका है, तकरीबन 1 घंटा ही बाकी रह चुका है मेरे आपके दरमियान। सो मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये जो 1 घंटा बाकी रह चुका है इसको मिलकर और मजीद खूबसूरत बनाया जाए पिछले वाले वक्त से भी ज़्यादा। सो अभी जो है वो हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक को भी, लेकिन लंच बॉक्स को भी साथ लेकर चलेंगे। लंच बॉक्स में अब ज़रा बात करते हैं हम अपने खानों की, कि खाने का नाम आए और उस पर बिरयानी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिरयानी की भी जो है ना वो कितने अंदाज होते हैं सामीन। किसी को स्पाइसी बिरयानी पसंद होती है, किसी को आलू वाली होती है, और किसी को चिकन बिरयानी पसंद होती है। सो इनमें से जो मुझे पसंद है वो मुझे आलू वाली बिरयानी पसंद है। सो अगर कभी मेरा चक्कर आप लोगों की तरफ लग गया तो आपने यही बिरयानी मुझे बना के खिला देनी है। और जो है ना किसी के लिए जो है बिरयानी सिर्फ तब मुकम्मल होती है जब उसके साथ रायता और सलाद हो, और फिर जो है वो पुलाव के शौकीन भी जो है वो कम नहीं होते। लोग चिकन पुलाव, फिर उसके बाद पुलाव जो है ना वो मस्ट का जो हो, मुझे बहुत पसंद है अगर अपनी तरफ से देखा जाए तो। पर चलिए सामीन, हम जो है ना एक छोटी सी गेम खेलते हैं आपके साथ, फूड गेम खेलते हैं, और मैं खानों का नाम लूँगी और आपके जो दिल में है फौरन से आपने मुझे बताना है कि इस चीज़ के साथ, इस खाने के साथ इससे मिलती जुलती क्या चीज़ आती है। सो अगर बात की जाए तो बिरयानी, बिरयानी के साथ क्या चीज़ आएगी। बताइएगा मुझे, और साथ में जो है मैं ये सवालात आपके सामने रख देती हूँ, फिर उसके बाद जो है हम एक ट्रैक शामिल करेंगे, और ट्रैक के उस पर फिर आपसे इन सवालात के जवाबात को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पहला सवाल है बिरयानी, और दूसरा सवाल है हमारा चाय, उसके बाद आया पराठा, और पराठे के बाद आए जी पकौड़े, और फिर उसके बाद आया समोसा, और समोसे के बाद आई चावल। सो अब सबसे मुश्किल सवाल जो है ना वो इसमें ये आता है कि इन चीज़ों के साथ क्या चीज़ सूट करती है, मतलब मोस्टली क्या खाया जाता है। और अगर खाना इस तरह का मनपसंद हो तो फिर उसके साथ कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है वो खाना कितना ही अच्छा हो अगर साथ बैठने वाला लोग, बैठने वाले जो है लोग अच्छे ना होना तो फिर मज़ा काम हो जाता है। सो साथ बैठने वाले लोगों को भी जो है वो इंजॉय करवाना है, खुद भी इंजॉय करना है। अगर आप देख रहे हैं कि साथ वाला इंसान सही से इंजॉय नहीं कर पा रहा तो आप अपनी बिरयानी की प्लेट उनके सामने कीजिए और उनको भी खुश कीजिए। और उसी के साथ सामीन, कभी कभी जो है वो सादा सा खाना जो है भी हमें अपनों के साथ बैठकर बहुत ख़ास लगने लगता है। जैसा कि अभी मैं डिस्कस कर रही थी कि भाई पुराने वाले टाइम में जो है मतलब गुजरा हुआ जो वक्त था ना हमारा, उसमें खाना खास ही तब होता था जब दस्तरखान पे जो है वो सारे बहन भाई या फिर कज़न जो है वो सारे इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे, और अगर एक भी बंदा मिस होता था तो फिर वो चीज़ हो जाती थी कि नहीं अभी खाना शुरू नहीं होगा, जब अगला बंदा आएगा तभी शुरू होगा। और फिर खाना खाने के बाद वो लड़ाई झगड़े कि ये गिलास मेरा है, ये प्लेट मेरी है, ये चीज़ मैं खाऊंगा, ये चीज़ मैं खाऊंगी। सो ये चीज़ें होती थी तो खाना और ज़्यादा अच्छा हो जाता था, और ज़्यादा मज़ा आने लग जाता था। सो सामीन, लंच बॉक्स का 1 घंटा तो मुकम्मल हो चुका है, और मैं हूँ आपकी होस्ट सलूराज। सलूराज का आपके साथ साथ रहेगा 2 घंटे का। दूसरे घंटे में जो है मैं खाने की बातें जारी रखूंगी, लेकिन अभी जो मैंने छोटे से सवाल आपके सामने रखे थे वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी है, और आप जो उनके मैसेज जो है वो जल्दी से रिप्लाई मुझे दीजिएगा, मुझ तक जो है उस सवाल के जवाब पहुँचाएगा। प्रोग्राम में जिन लोगों ने अभी 107.1 FM को ट्यून किया है, मैं उनको नंबर नोट करवा देती हूँ, 01157100971। सवाल आपके मैसेज हम तक पहुंचेंगे, जब से ही आपका मैसेज हम तक पहुंचेगा तब तक के लिए प्रोग्राम में जो है वो लंच बॉक्स को साथ लेकर चलेंगे, एक मौसीकी, एक प्रोग्राम में खूबसूरत सा ट्रैक शामिल कर देते हैं, ताकि आपको भी सोचने का वक्त मिल जाए कि कौन से खाने की चीज़ के साथ कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। सवाल आइए बढ़ते हैं इस ट्रैक की जानेब, इस ट्रैक के साथ रहेगी आपसे मुलाकात, और स्टे ट्यून्ड फजल 97.1 FM एंड ऐप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम संतरी समातों को रेडियो वजन 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च वाज, आप सुन रहे हैं सरराज के साथ, मेरा आपका साथ है ठीक ठीक 2 बजे तक। सर उसी के साथ साथ वापसी पे हम आ गए हैं, बट अभी मेरे पास जो हमें सवाल प्रोग्राम में शामिल किए थे, एक छोटी सी फूड गेम खेली थी और उसके जवाब बाद जो है वो मेरे पास आए हैं कि बिरयानी के साथ रायता सूट करता है, चाय के साथ बिस्किट सूट करते हैं, पराठे के साथ अचार या दही और राइट, पकौड़े के साथ चटनी, समोसे के साथ भी चटनी। अच्छा, समोसे के साथ सिर्फ चटनी अच्छी क्यों लगती है, मतलब चाय भी अच्छी लगती है, केचप भी उसके साथ मजे की लगती है। हाँ, चावल के साथ रायता। वेल, मैंने कहा था कि एक एक सवाल का जवाब सबने देना, लेकिन ये हमें जो है पाकिस्तान से सुन रहे हैं, कराची से सना, सना ने भाई हमें सारे सवाल के जवाब दे दिए, तो दूसरों का दूसरों की बात ही नहीं आने दी आपने। है सदे, कोई बात नहीं, आपने इतना दिमाग लगाया और हमें इस जो है वो इस मुश्किल से सवाल का जवाब दिया। सवाल उसी के साथ साथ अभी बात करते हैं घर के खाने का, बाहर के खाने से क्या मुकाबला या कोई मुकाबला है भी या नहीं। आपने मुझे बताना है कि आपको स्ट्रीट फूड के साथ साथ फेवरेट आपके स्नैक्स कौन से हैं, और चाय के साथ आप क्या खाना पसंद करते हैं, बिस्किट या फिर समोसे पकौड़े। मतलब बोलते हैं कुछ लोग जो चाय के साथ जो है वो समोसे पकौड़ों को खा लेते हैं, और हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इस टाइम डाइट पे हैं, जो कुछ खा नहीं सकते बेचारे। सामीन, घर के खाने की एक अपनी ही बात होती है, ताज़ा खाना अपनी पसंद के मुताबिक, मसाले, घर का माहौल और अपनों के हाथ का जायका। लेकिन बाहर के खानों से जो है वो तब उनका भी एक अपना टेस्ट होता है, अपना उनका हिसाब होता है। बट मैंने जो चीज़ नोटिस की है कि बताते हैं आपको हमने क्या नोटिस किया है।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो वर्जन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। फिर ग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च बॉज, आप सुन रहे हैं सरोज की, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक ठीक 2 बजे तक। सर, आपने एक तो ट्रैक ऐसे शाम में करवा दिया था और फिर जो है वो आप मुझे बुला भी दें कि आ जा, सो मैं आ गई वापस आपके पास। और अभी जिनका मैंने मैसेज प्रोग्राम में शामिल किया था, यानी कि जिन्होंने सवाल के जवाब दिए, तो अभी एक पैगाम प्रोग्राम में शामिल करवाया कि मतलब जो पाकिस्तान से हमें कराची से सुन रही है सना, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की चाय की बात की जाए ना, तो चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है हमारे लिए, हमारे यहाँ तो एक इमोशन है। मतलब पता नहीं, हमारे यहाँ तो जो है वो सर्दी को कम करने के लिए कॉफ़ी या चाय पी जाती है। सुबह की चाय, दोपहर की चाय, शाम की चाय, मेहमान आए तो चाय, दोस्त मिले तो चाय, और अगर कोई कहे बस एक आखिरी चाय, वो मतलब वाह यार, मतलब वो ये कहना, उनका ये मैसेज है प्रोग्राम में शामिल हुआ कि सुबह की चाय, दोपहर की चाय, शाम की चाय, मेहमान आए तो चाय, सब दोस्त मिले तो चाय। और जब बात आ जाती है कि बस आखिरी चाय, तो सब जानते हैं कि वो आखिरी चाय नहीं होती। दैट्स ग्रेट, आपकी तो बड़ी ही मज़े की स्टोरी चल रही है वहाँ पे। और चाय के साथ अगर बात की जाए तो बिस्किट्स, केक, नमक पारे और पकोड़े, समोसे या फिर कुछ भी नहीं, सिर्फ चाय ही काफ़ी है। ओ वाह यार, मतलब हम लोग यहाँ पे जो है ना नोटिका में जो है, हम लोग चाय इसलिए पीते हैं, कॉफ़ी इसलिए पीते हैं क्योंकि सर्दी को थोड़ा सा कम कर लिया जाए, लेकिन आपके वहाँ पर चाय तो ऐसे पी जाती है जैसे फ्री में मिल रही है। सोल सामीन, अब इसी के साथ साथ बात करते हैं खाने की, लंच की, कि कभी कभी जो है वो सबसे मज़ेदार खाना वो नहीं होता जो हम सोचते हैं कि महंगा खाना, तो ये चौक वो कहते हैं ना कि ऊंची दुकान और फीके पकवान वाला सीन। कभी कभी जो है एक सादा सा आलू का पराठा जो है वो भी बहुत खास लगने लगता है। राइट, ये बात बिल्कुल आपने सही की है। कभी कभी दाल चावल का जायका याद रह जाता है, कभी जो है वो घर की बनी हुई खीर और साथ में जो है कभी कभी गर्म रोटी। अगर ये बातें जो है ना अगर हम करेंगे ना, तो मुझे वो गुजरा हुआ पल जो है वो याद आ जाएगा अपना भी, क्योंकि असल जायका जो है वो उन्हीं दिनों में था, उन्हीं खानों में था। कभी कभी इसमें जो है मोहब्बत भी शामिल होती थी, और शायद इसीलिए जो है हमें कुछ खाना जो है वो हमेशा याद रहते हैं। खाना ख़त्म हो जाता था लेकिन उससे जुड़ी यादें रह जाती हैं, और रह जाती थी भी बल्कि। और मेरे प्यारे समीन, अब जो है ना अगर बात की जाए कि अब का जो टाइम आ गया ना, ये अब जो है वो उस तरह का खाना नहीं मिलता, मतलब उस तरह का जायका नहीं होता। या फिर हम लोग यहाँ पे हैं परदेश में, हमारे लिए वो परदेश है, उनके लिए हम परदेश है। सो अब जब बात की जाए उधर की, पाकिस्तान की, तो वहाँ पर जो है वो खाने अच्छे होते थे, लेकिन अब यहाँ की बात की जाए तो यहाँ के खानों का टेस्ट जो है वो भी लाजवाब है। सवाल सामीन, लंच बॉक्स को आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे और इस पे से मज़े के खाने भी निकलते रहेंगे, और जब खानों का जिक्र होगा तो फिर जाहिर सी बात है भूख भी हमें लगेगी। लेकिन अभी जो है वो यही कह देते हैं कि प्रोग्राम में तकरीबन वक्त भी है, कमर्शियल ब्रेक का भी, और उसी के साथ साथ एक ट्रैक की फरमाइश भी मेरे पास मौजूद है। बोल आइए इस ट्रैक को प्ले करते हैं, थोड़ा सा दुखी सा हो जाएगा लेकिन खैर आपने इस ट्रैक को इन्जॉय करना है। अगर पर्सनली देखा जाए तो ये ट्रैक बहुत मज़े का है, अगर आप जो है वो दुखी वाले सीन साइलेंट में ना जाएं। वाला इस ट्रैक को सुनते हैं, इस ट्रैक को इस बार में रहेगी आपसे मुलाकात, और स्टेडियम फजल 7.1 एफएम एंड ऐप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

जी हाँ, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। फिर गया हम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लंच बॉक्स, आप सुन रहे हैं सर आज की शाम पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक है ठीक 2 बजे तक। सवाल इसी के साथ साथ अभी प्रोग्राम में एक ट्रैक शामिल किया था, ट्रैक इस पर मेरा आपको मैंने हालांकि छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और मैंने अपना लास्ट दिन रखा होता है म्यूजिक का। लंच बॉक्स को मजीद आगे लेकर बढ़ेंगे, बहुत सी गपशप कर ली, बहुत से खानों को इंजॉय कर लिया, बहुत सी जो है वो टेस्ट के हवाले से डिस्कस भी कर लिया, टॉपिक को भी डिस्कस कर लिया। लेकिन अभी आगे जो है वो अब हम फरमाइशों को लेकर चलेंगे, उन पैगाम को जो आप किसी को कह नहीं सकते, उन ट्रैक्स को जो आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। कुछ मतलब लोग ऐसे होते हैं जो बातों से जो है वो बात नहीं कर पाते, गानों के थ्रू या ट्रैक्स के थ्रू जो है वो अगले के साथ बात को शेयर करते हैं, लेकिन कोई बात आगे की समझने वाले ही समझते हैं। खैर अभी मैंने सोचा था कि अपनी पसंद का ट्रैक जो मैंने आपके साथ शेयर करना था, मैं आगे उसके बारे में बात भी करी थी, लेकिन उससे पहले जो एक छोटे से ट्रैक की फरमाइश मेरे पास मौजूद है, इस ट्रैक को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। फिर इसके बाद आपके अपने दरमियान अपनी फरमाइश को भी ज़रूर शामिल करेंगे। अभी तक के लिए साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से वेलकम करते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम में जिसको कहा जाता है लंच बॉक्स। डांस लंच बॉक्स में खूबसूरत सा ट्रैक शामिल किया था और इस ट्रैक को सुनने के बाद मोस्ट मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मे भी शायद कुछ लेडीज ऐसी हैं, कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जिनको सुनने के बाद अपना वक्त याद आ गया हो। लेकिन खैर मकसद बिल्कुल भी आपको दुखी करना नहीं था, आपको सिर्फ अपनी पसंद को सुनाना था। और अगर आप दुखी हुए भी तो जाहिर सी बात है मैं भी दुखी हुई होंगी। खैर वो अभी जो है वो प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे एक और खूबसूरत ट्रैक के साथ, एक छोटी फरमाइश के साथ। मैं भी शायद इसके बाद एक और फरमाइश को शामिल करूं और फिर हमारे दरमियान वक्त हो जाएगा ख़त्म। सो आइए प्ले करते हैं इस ट्रैक को। इस ट्रैक के उस पार मेरी रहेगी आपसे मुलाकात, साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा। ट्यून करके रखिएगा 107.1 FM को एंड डैम को।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड, नॉटिंघम, या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: Radio station for people who love music.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते रहना अर्सलान अली और आप सुन रहे हैं रेडियो फॉर द 97.1 एफएम रोटिंगम से। इस वक्त लाइव हूं और मेरे साथ जो है वो क्या चल रहा है, जिंदगी के क्या मामला चल रहे हैं, हम उसके ऊपर बात कर रहे थे प्रोग्राम में। बनल जी, एडवर्टाइजमेंट जो थी उससे पहले हमारी जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि कहाँ कहाँ पर जो है वो खामोश होना चाहिए और कहाँ कहाँ पर अपनी बात जो है वो उसका इजहार करना चाहिए, कहाँ पर अपनी राय देनी चाहिए, कहाँ पर आपकी राय देना ज़रूरी होती है और कहाँ पर खामोश हो जाना बेहतर होता है। इस चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे थे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हम जो है वो टॉपिक लेकर चल रहे थे। क्योंकि जी खामोशी जो है वो हमेशा कमज़ोरी नहीं होती और हर आर्गुमेंट का जवाब भी जो है वो ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि जी जो गुस्सा है उसमें बात का जवाब दिया गया जो है ना, समटाइम इंसान के लिए बड़ी ज़्यादा मुश्किलात जो है उसको बढ़ा देता है और बहुत सारे रिलेशन्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं और बहुत सारी दोस्तियां जो हैं वो टूट जाती हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात आपके साथ वाक़ हो जाते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो असर करते हैं। बहरहाल जी, खामोश रहने और दिल में बात को दबाने में बड़ा फ़र्क होता है। मैं समटाइम अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं कि अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे मामलात हो जाते हैं कि हमें समटाइम खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए और कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें जजमेंट ये करते हैं कि जी जहाँ पर ये बंदा खामोश हुआ है यहाँ पर जो है वो ये कमज़ोर पड़ गया है। जबकि मेरे ख्याल से अच्छी खामोशी जो है वो अच्छा एक लिसनरशिप जो होती है ना, जो आपका एक अच्छे से सुनना, किसी को सुनने का जो अंदाज़ होता है वो कहलाती है। मैंने 2017-18 में जब मार्केटिंग स्टार्ट की तो हमारी उस टाइम मार्केटिंग का स्टाइल ये हुआ करता था कि हमें जो है वो अगले बंदे की आर्गुमेंट्स सुनने पड़ते थे, अगले बंदे की जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स उसके सुनने पड़ते थे अपनी प्रोडक्ट को लेके, या जो भी आप अपना जो है वो सर्विसेज दे रहे होते हैं उस चीज़ को लेके आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुननी पड़ती हैं, ऐसी चीज़ें इग्नोर करना पड़ती हैं कि बंदा क्या ही कह ले। लेकिन उस टाइम का जो माहौल था, उस टाइम का जो क्राइटेरिया था, आगे से मार्केट करने वाले बंदे जो मेरे बैच के थे वो आर्गुमेंट के साथ, आर्गुमेंट का ही जवाब जो है वो आर्गुमेंट के साथ देते थे और उस बात को उन्होंने इस तरह से प्ले करना, यानी कि अगले बंदे ने अगर आपसे कोई उल्टी सीधी बात कर दी या आप उसको गुस्से में गुस्सीले अंदाज में जो है वो जवाब देंगे तो उसका क्या ही असर होगा, क्या ही आप उस बंदे को सर्विसेज दे सकेंगे या क्या ही आपकी जो है वो डील कंप्लीट होगी। डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं सुनना पड़ता है। बहरहाल जी, जब मैं उस टाइम सुनता था और मैंने चूंकि इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई थी और थोड़ा बहुत मैं अंडरस्टैंड करता हूँ चीज़ों को, तो मैंने जब उस टाइम सुनना स्टार्ट किया, एक अच्छा लिसनर बनके लोगों की बातें सुनी, लोगों की चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया, फोकस किया और उनके जो कम्प्लीमेंट्स थे उनको भी नोट किया, तो यकीन कीजिए कि मेरे लिए वो बड़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई थी। नॉट इवन उस टाइम, बल्कि उसके कुछ टाइम के बाद मुझे उसके रिजल्ट आना शुरू हुए और फिर पता चला और जब हमारी ग्रोथ होना स्टार्ट हुई तो फिर जाके आइडिया हुआ। लेकिन मैं अगर उस टाइम फ्रेम का आपको बताऊं तो उस टाइम फ्रेम के अंदर मुझे बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो सुनने को मिले, बहुत सारी नेगेटिव थाट्स जो थी लोगों की, उन्होंने अपनी उस थाट का इजहार किया कि भाई तुम क्यों सुनते हो, तुम उनको जवाब क्यों नहीं देते। लेकिन मेरे लिए वो फैसला बड़ा अच्छा था। जब मैं बाद में मैंने सोचा कि यार मेरे लिए फैसला अच्छा इसलिए था क्योंकि मैं जब सुनता था उस टाइम तो वक्त गुजर जाता था, लेकिन उसके बाद मेरे उन लोगों से रिलेशन इस तरह के डेवलप हुए कि हमारी जो है वो अंडरस्टैंडिंग इस तरह की हुई कि मैं बड़ी बड़ी डील्स लेके आता रहा हूं कंपनी को, हमने बहुत ज्यादा फायदा दिया। जो चीज़ है जी आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा भी देती है, लेकिन हर जगह पे सुन लेना, हर जगह पे बर्दाश्त कर लेना ये भी ज़रूरी नहीं है। और हर बंदे का पर्सनल एक अलग से ही एक्सपीरियंस होता है। आप जिस बंदे को पकड़ेंगे भाई उसकी एक नई कहानी होगी और उसका एक नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा सुनने को। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को लेके कि आप इसके बारे में एक अलग से ही राय इख्तियार नहीं कर सकते, बल्कि इसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ किस्म की राय हो सकती है।

क्योंकि जी समटाइम ये होता है कि बहुत सारी जगहों पे आपको खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका आपकी जो बाउंड्रीज है मुसलसल कोई बंदा आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा हो और आपकी इज्जत नफ्स जो है उसके ऊपर अपने पाँव रखे या अपनी ज़ुबान के साथ उसको पमाल करने की कोशिश करे, तो डेफिनेटली आपको उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि खामोशी से मेरे ख्याल से उस चीज़ का हल नहीं निकलेगा। ये एक अलग किस्म की राय है। देखिए हर चीज़ की जो सिचुएशन होती है मेरे ख्याल से उसके अंदर हम जब देखते हैं और हर तरह का अलग से क्राइटेरिया होता है और हर सिचुएशन के अंदर अलग से ही एक जो है वो रिजल्ट निकलता है।

0: बहरहाल जी इसी टॉपिक के ऊपर हम मजीद बात करेंगे और आपकी जो राय है उसका भी हम एहतराम करेंगे और उसको भी प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे, लेकिन ये एक बारिश सॉन्ग है, इस सॉन्ग के उस पार दोबारा से हम मुलाकात करेंगे आवाज़ की दुनिया में रेडियो फ़ज़ा पर ही। और अगर आप अपनी राय हम मेरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपने करना कुछ यूँ है कि आपने मोबाइल फ़ोन उठा लेने हैं और डायल करना है 01157100971 हमारा रबते का नंबर, और इस सॉन्ग के बाद हम दोबारा से अपने इस टॉपिक को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं इस सॉन्ग के उस पार।
1: जुदाई के उस मोड़ तक दर्द की धुंध है और कुछ भी नहीं, जाने मन अब दिल लौटने के नहीं, छोड़िए अब वो किस्सा पुराना हुआ, वो जो उलझा था वैसी हवा से कभी, उस दिए को मुझे तो जमाना हुआ।

फसाना हुआ वो जो उलझा था वैसी हवा से कभी उस दिए को मुझे तो जमाना हुआ। एक खुशबू सी फैली है चारों तरफ उसके इम्कान की उसके ऐलान की।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: Bigger, bigger and better. The radio station for people who love music. 97.1 FM.

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आवाज की दुनिया में आपको दोबारा से खुशामदीद कहा जाता है। आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम रोटिंगम से इस वक्त लाइव। जिन लोगों ने अभी अभी हमें ट्यून किया है उनको बताता चलूं कि हमारा जो आज का शो है आफ्टरनून मिक्स, इसके अंदर हम कुछ अलग से टॉपिक जो है वो लेकर आए हैं। टॉपिक बड़ा मजे का, क्रिस्पी सा है और स्पाइसी सा भी है, क्योंकि इसके अंदर आज हम बात कर रहे हैं कि जी आप कहाँ कहाँ पर आपको खामोश होना चाहिए और कहाँ कहाँ पर आपको बात करनी चाहिए, और आप लोगों की जो राय है उसका भी हम लोग एहतराम करते हैं और उसको भी हम इस प्रोग्राम के अंदर शामिल कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम जो है म्यूजिक का बड़ा शानदार किस्म का तड़का जो है वो लगा रहे हैं। उसके अलावा जी, अगर आप इस शो के अंदर और इस प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम और शो मेरे ख्याल से एक ही बात है, इसके अंदर आप शामिल होना चाहते हैं तो आपने करना कुछ यूं है, आपने डायल करना 01157100971 हमारा रابطे का नंबर। और आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, शो के बारे में बता सकते हैं, और जी इसका जो आज हमारा टॉपिक है इस शो के अंदर उसके बारे में भी बता सकते हैं कि जी आपको आज का जो टॉपिक है वो किस तरह का लग रहा है और आपके साथ इस तरह के कब कब मामलात हुए। और हम ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे कि आपकी जो खामोशी है समटाइम वो इस तरह की होती है कि जी आपको आपकी जो खामोशी है वो अगर इनकार में हो तो उसको हाँ समझ लिया जाए, ये बड़ा प्रॉब्लम वाला सीन होता है। और बाज़ औक़ात आप लोग इस चक्कर में ऐसा फंस जाते हैं के बाद में आप फिर लाख एक्सप्लेन करते रहें, आपको वो जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट नहीं करती और फुलफिल नहीं कर पाती उस बात को, क्योंकि आपकी जो खामोशी है उसको हाँ समझ के बाद में उस चीज़ को इतना बढ़ावा दे दिया जाता है। बहुत सारे रिश्ते हैं इस तरह के जहाँ पर आप खामोशी इख्तियार करते हैं तो बाद में उस चीज़ को हाँ समझ लिया जाता है, जबकि आपने वो खामोशी इसलिए इख्तियार की होती है कि आपकी खामोशी को इनकार समझा जाए। बहरहाल जी, ये एक बड़ी अलग सी चीज़ है और बड़ी अलग सिचुएशन हो जाती है।

एक ऐसा ही वाक्य मेरे एक दोस्त था उसके साथ हुआ, और मुझे प्रोग्राम में ब्रेक से पहले वो बात याद आ गई थी। और मेरा जो है वो कमर्शियल में बड़ी ज़्यादा हंसी निकल आई। अकेला बैठा बैठा मैं मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उस बेचारे के साथ कुछ इस तरह का सीन हो चुका था जो आज हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल उसके ऊपर फिट आता है। बल्कि जो मेरा फ्रेंड था वो लाइक करता था किसी को, और उसके घर में रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन वो जिसको पसंद करता था घर में रिश्ते की बात उस लड़की के लिए नहीं थी चल रही। तो हुआ कुछ यूँ कि जी उसकी फैमिली जिस बंदी को पसंद करती थी, यानी जिस लड़की को लाइक करते थे उसकी फैमिली वाले, उन्होंने आके उस लड़के से पूछा कि भाई हमने वहाँ पर ये सोचा कि आपका रिश्ता वहाँ पर कर लिया जाए। तो लड़का आगे से इनकार नहीं कर सका और खामोश हो गया। उसने समझा कि उसकी खामोशी को इनकार ही समझा जाएगा, लेकिन जी उसकी खामोशी को उसकी हाँ समझ लिया गया। ये बात उसको तब समझ आई जब उसके घर वालों ने शॉपिंग स्टार्ट कर दी, और कुछ ही दिनों के बाद उसकी इंगेजमेंट की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी। और वो जो है जी हमारे साथ एक टूर पे गए हुए थे। हम जब टूर से वापस आए और थोड़ा घूमने फिरने के लिए गए हुए थे, मैं बड़ा ज़्यादा लाइक करता हूँ ट्रैवलिंग को, और हम इकट्ठे गए और दोस्तों के साथ। जब हम वापस आए, आने के बाद जब हम गॉसिप कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे से पिक्चर्स हम शेयर कर रहे थे कि भाई आपके मोबाइल में जो पिक्चर्स हैं वो दे दो, और जो हमारे मोबाइल में पिक्चर्स हैं हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे थे, उसी दौरान उस बंदे की जो है वो हालत बिगड़ने लगी, हालत गैर होने लगी। बात करते करते वो परेशानी उसकी बातों में दिखाई दी और सुनाई भी दी, और हमें जब एहसास हुआ कि ये बंदा जो है इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो हम दोस्तों ने फैसला किया कि हम इकट्ठे होकर उसके पास जाते हैं और उससे बात करते हैं कि भाई क्या मसला हो गया, क्या ऐसी सिचुएशन हो गई, या ऐसा क्या ही हो गया कि हम इतना अच्छा टूर करके आए। उसके बाद तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि जी जो ट्रैवलिंग होती है, जो टूर करते हैं आप कहीं नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, तो उसके बाद मेरे ख्याल से 1-2 महीने के लिए बिल्कुल इंसान जो है वो फ्रेश रहता है, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर से सारी नेगेटिव चीज़ें, सारी नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और जो बर्डन होता है काम का वो भी ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को भी घूमना चाहिए ताकि आप लोग कुदरत के हसीन नज़ारे जो हैं वो देख सकें। बहरहाल जी जब हम इकट्ठे हुए और उससे बात की, तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जो है उसका एंगेजमेंट उसकी फाइनल हो चुकी है, और उसकी इंगेजमेंट जो है आफ्टर 2-3 डेज की कोई डेट थी, और मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन गालबन जब हम वापस आए तो उसके 2-3 दिन बाद की उसकी फैमिली ने प्लानिंग की हुई थी कि जी आपकी इंगेजमेंट है, हमने बात कर ली है और बात इतनी बढ़ चुकी है कि बात अब इंगेजमेंट तक पहुँच चुकी है। कहता जी कि जब मैंने घर बात की तो उन्होंने बोला कि हमने तुमसे बात की थी और तुम्हारी खामोशी खामोशी हाँ में ही होती है। बेचारा कहता है जी मैंने लाख एक्सप्लेन किया कि भाई मेरी हाँ नहीं थी, मेरी खामोशी मेरा इनकार था। कहता है मैं कैसे ही समझाऊँ। कहते हैं जी अब हमारी कमिटमेंट हो चुकी है, बड़े कहते हैं जी अब हम करके रहेंगे, अगर ना किता तो मर जाएंगे। तो पता है ना पंजाबी आंदा जी, पंजाबी जो है हमारे हमारे जो रिलेशन जो हमारे जो बड़े हैं बाऊजदाद हैं, हमारे जो बड़े जब फैसला कुछ कर लें फिर दुनिया इधर दी उधर हो जाए, ऐसे फिर फैसले तो नहीं हट सकते। कहीं ना कहीं उनकी बात भी ठीक होती है, क्योंकि जी आप जब कमिटमेंट कर लेते हैं किसी चीज़ को लेके, और ख़ास तौर पे जब इतना सेंसिटिव मामला हो, तो जाहिर आप जब एक बड़ों की आपस में बात हो चुकी हो, जुबान हो चुकी हो, उसके बाद फिर आप क्या ही उस फैसले से पीछे हटना। खैर जी ये सिचुएशन थी, और इस सिचुएशन को हमने बड़ी मुश्किल से और बड़ी ही मुश्किल से हैंडल किया था। और फिर हमने उसके वालद साहब से बात की, उनको बैठाया, बात की कि देखिए अभी बात कुछ बिगड़ी नहीं है, अगर बंदा आपका हमारा जो यानी कि दोस्त है आपका बेटा वो इस चीज़ को लेके एग्री नहीं करता, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप जो है इस फैसले को थोड़ा सा चेंज कर लें, या कुछ इस तरह की बात करें उनसे ताकि मिली जुली बात हो जाए और बात को ख़त्म कर दिया जाए। खैर जी इन शॉर्ट ये कि आप देखें इस फैसले से हमें ये सबक मिलता है कि भाई आपको हर जगह पे खामोश नहीं हो जाना चाहिए, और ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपका हाँ या ना में जवाब देना बड़ा ज़रूरी हो, तो आपको चाहिए कि आप वहाँ पर बात को क्लियर करें। बहरहाल जी ज़रा सा इमरान हाशमी का जो सॉन्ग है इसको हम सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और इस गाने के उस पार दोबारा से इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि गाना बड़ा ज़रूरी है जी, और गाने के उस पार दोबारा से मिलते हैं।

वेल जी, वेलकम वंस अगेन। मुझे सुन रहे हैं आप रेडियो फजाना 97.1 एफएम से। बाला जी, आज हम बात कर रहे हैं कि आपने जो बैलेंस है वो किस तरह से करना है, खामोशी को लेकर और बोलने को लेकर के, कहाँ पर आपने बात करनी है और कहाँ पर आपने खामोश होना है, इसके जो बैलेंस है इस चीज़ को आपने किस तरह से करना है, इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ जी आज हम बड़े अच्छे, हमारे जो प्ले लिस्ट है उसको भी हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं।

वेल जी, ये टॉपिक जो है वो सेंसिटिव इस हवाले से भी है क्योंकि आप जब खामोश हो जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो खामोशी आपके लिए वो पॉजिटिव सिग्नल ही दे, क्योंकि सम टाइम जो है वो खामोशी अच्छी होती है और बाज़ औक़ात वही खामोशी जो है वो आपके लिए वो बाले जान बन जाती है। इसलिए क्योंकि जी सम टाइम हमारे जो है वो आपस में कुछ रिश्तों को लेकर के कुछ बातें होती हैं, जब आप खामोश हो जाते हैं वो बात अंदर ही रह जाती है और फिर बात वो बढ़ती बढ़ती कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। वेल जी, आप मुझे बता सकते हैं कि आप अगर आपके दोस्तों के दरमियान कोई बात आपको बुरी लग जाए और लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि छोड़ो यार कोई बात नहीं, फिर वही बात दिल में रहती रहती छोटी से बड़ी होती जाती है, तो क्या आप जो है वो बात को ख़त्म करने के लिए दोबारा फ़ौरन से बात कर लेते हैं या फिर आप कुछ गैप देते हैं ताकि कुछ सोच लिया जाए और समझ लिया जाए और अगले बंदे को भी टाइम दिया जाए और उसके बाद दोबारा से बात की जाए। ये बड़ा अच्छा डिसीजन भी हो सकता है कि आप कुछ गैप दें, लेकिन हर शख्स जो है वो अपने मुताबिक चलता है। आप इस चीज़ को लेके किस तरह से जो है वो फॉलोअप करते हैं और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इस बारे में क्या है?

समटाइम कुछ इस तरह की लाइनें भी होती हैं जी जो आपकी खामोशी का इजहार होती हैं, और कुछ आप बोल के भी आप अपने अंदर वो बात रख लेते हैं। यानी कि समटाइम आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कुछ इस तरह का वाक्या हुआ आपसे, आपका पार्टनर या आपका दोस्त या आपका चाहने वाला या आपसे प्यार करने वाला या फिर आपकी फैमिली के अंदर कोई भी मेंबर आपसे पूछता है कि भाई क्या बात हुई है, आप कहते हैं कुछ भी नहीं। यहाँ पर भी आप खामोशी ही इख्तियार कर रहे हैं। जरूरी नहीं खामोश होने का मतलब बिल्कुल ये हो गया जी आपकी चुप्पी लगी है। बहरहाल ये जो सारे शिकवे गिले होते हैं ये अपनों से ही होते हैं, और यहाँ से ही हम एक बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है तुमसे ही ये प्ले करने जा रहे हैं। इस गाने के उस पर दोबारा से हम मुलाकात करेंगे और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि कहाँ पर बोलना चाहिए और कहाँ पर खामोश होना चाहिए। इसके अलावा हमें आइडिया हो सके जी कहाँ पर रिश्तों में जो है वो खामोशी मोहब्बत को परवान चढ़ाती है और कहाँ पर रिश्तों में बोलना जो है वो मोहब्बत को फ़ायदा मंद साबित हो सकता है।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं अनारसलान अली और आप सुन रहे हैं आफ्टरनून मिक्स में मुझे रेडी फॉर द 97.1 एफएम नॉटिंघम से लाइव। टाइम हो जाता है जी 3:30 का और आपका और मेरा साथ रहने वाला है ठीक 4 बजे तक। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हम बात कर रहे थे कि हमें कहाँ पर खामोश होना चाहिए और कहाँ पर अपना जो है वो जवाब देना चाहिए, बात करना चाहिए, इस चीज़ को किस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर ज़रूरी होता है बात करना, कहाँ कहाँ पर ज़रूरी होता है खामोश होना और कहाँ पर जी जो है आपका इख्तलाफ होना ज़रूरी है और कहाँ पर आपका इख्तलाफ करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। क्योंकि जी रिश्ते जो हैं वो उस वक्त कमज़ोर नहीं होते जब इख्तलाफ हो, बल्कि रिश्ते उस वक्त कमज़ोर होते हैं जब लोग इख्तलाफ के बावजूद बात करना छोड़ देते हैं। यानी कि आपका इख्तलाफ हो और उसके बाद आप बात ही ना करें तो मेरे ख्याल से रिश्ते जो हैं कमज़ोर हो जाते हैं। वैसे जी मुझे आप एक बात बता सकते हैं कि जब आपको वो गुस्सा दिलाए, आपको किसी की कोई बात पे गुस्सा आ जाए तो आप क्या करते हैं? फौरन जवाब दे देते हैं या फिर खामोशी इख्तियार करते हैं या फिर वो जगह छोड़ देते हैं या फिर आप ये सोचते हैं चलो बाद में बात करेंगे, भाई देखते हैं क्या किया जाता है उस टाइम। क्योंकि जी मेरे ख्याल में असल मकसद जो है वो ये नहीं कि आपने जवाब दिया या नहीं दिया, बल्कि असल चीज़ ये होनी चाहिए कि आपने अपने जज्बात को उस टाइम किस तरह से कंट्रोल किया और उस फैसले को लेके आपने किस तरह पे जो है अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को अपनी मुट्ठी में बंद रखा और उस फैसले के ऊपर असरअंदाज नहीं होने दिया। ये चीज़ मैटर करती है, आई थिंक सो। हो सकता है कि आप इस बात से इख्तलाफ करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि जी भाई आप जो है वो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपने उस टाइम जवाब दिया या फिर नहीं दिया, बल्कि मैटर ये करता है कि आपने उस टाइम जो है अपने इमोशंस को, आपने अपने जो है वो जज्बात को किस तरह से कंट्रोल किया। क्योंकि जो इमोशंस होते हैं, जो आपके मुंह से निकली हुई ज़ुबान होती है, वो अगले बंदे को हर्ट करती है और उससे फिर चीज़ें ख़राब होती हैं। जबकि गुस्से में इंसान को ये बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि मैंने क्या बोलना है, मैंने क्या नहीं बोलना, और फिर वो जो इमोशंस होते हैं वहाँ पर गड़बड़ कर जाते हैं, उसी से चीज़ें ख़राब होती हैं और फिर वहीं से जाके भाई मामला जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं।

मैं तो सबसे अच्छी चीज़ जो समझता हूँ कि गुस्से के अंदर भाई बोला ही ना जाए, मैं बोलता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि जो गुस्सा है उसके अंदर जब बोला जाता है तो फिर मामलात ख़राब होते हैं, और गुस्से के अंदर मेरा जो गुस्सा है वो बड़ा ज़्यादा बुरा है, और जोशीले टाइप का गुस्सा है भाई, जो कि बड़ी अच्छी बात नहीं है। और मैं हमेशा आपसे ये कहूँगा कि भाई आपने भी अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है, कभी भी ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती। हमारे यहाँ यहाँ पर बड़ा प्राउड फील किया जाता है कि भाई वो बंदा जो है बड़ा गुस्से वाला है, या फिर वो बंदा जो है बुरा मना जाता है, बड़ी जल्दी बुरा मान जाता है, उससे बात करते हुए डर लगता है। ये बात जो है वो बड़ी कुछ लोग अपने लिए प्राउड फील करते हैं जब उनके बारे में ये इजहार किया जाए, इवन के खानदानों के अंदर भी और फैमिलीज के अंदर भी। हमारे यहाँ हर घर के अंदर लाजमी कुछ ना कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके बारे में ये इजहार किया जाता है कि भाई वो बंदा आएगा तो डर जाओ, सहम जाओ, और उससे बात करते हुए सोचो, एहतियात करो। ओके, कहीं ना कहीं ये बात अच्छी है कि आप बात करते हुए आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की हो कि अगला बंदा बाउंड्रीज क्रॉस ना करे, लेकिन हरगिज़ ये बात नहीं होनी चाहिए कि अगला बंदा इजहार ना करे अपनी मोहब्बत का, अपनी राय का, अपनी बात का, क्योंकि जी यहाँ से आगे इख्तलाफ पैदा होते हैं, फिर यहाँ से वो जो इख्तलाफ है बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और जब आप अपना इख्तलाफ कर ना सकें तो फिर वो जो है वो रिश्ते को ख़राब कर देते हैं। और इस चीज़ को लेके कि कभी भी प्राउड फील नहीं करना कि अगर आपको ये समझा जाए या ये आपके बारे में राय जो है वो कायम की जाए कि आप बड़े गुस्से वाले हैं, तो मैं ये कभी भी बात अपने लिए अच्छी नहीं समझता जब मुझे कोई बंदा बोले कि भाई आप जोशीले हो गुस्से को लेके। मैं कहता हूँ भाई आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरे जो है ना अंदर वो सब्र आ जाए या फिर गुस्सा कम हो जाए। वेल जी, जब मुझे गुस्सा आता है मैं खामोश हो जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि भाई ये इस बंदे के अंदर ईगो है, इसकी ईगो का मसला है, और वो जो है जी मेरी खामोशी को मेरी ईगो के साथ अटैच करके वहाँ पर भी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर ये बड़ा अजीब सा वो सिचुएशन, बड़ा अजीब सा सिनेरियो बन जाता है। लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि क्या गुस्से के अंदर खामोश होना या फिर ओवरऑल खामोश हो जाना किसी बात को लेके, क्या वो ईगो का मसला हो सकता है? मेरे ख्याल में तो ये ईगो का मसला नहीं, हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जी सेल्फ रिस्पेक्ट यही है कि आप अपनी इज्जत को, आप अपनी हदूद को समझें, और आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सी बात करूंगा, अगला बंदा मुझे क्या जवाब दे सकता है, तो फिर वहां से मसले मसाइल मेरे ख्याल से कुछ मैनेजेबल हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जी अपनी इज्जत को बचाना उनके रिश्ते को बचाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी बड़ी एक अलग सी एक चीज़ है। खैर, ये एक अलग ही टॉपिक है। बहरहाल, आपके लिए मुझे बताइएगा कि जो इज्जत है उसको बचाना ज़रूरी है या फिर अपने जो रिलेशन है उसको बचाना ज़रूरी है। अगर आपकी इज्जत और आपके रिलेशन के दरमियान में आप आके खड़े हो जाएं तो आप किस तरफ टर्न करेंगे? और ये भी बताइए कि क्या दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल हैं, मुमकिन हैं या नहीं?

0: बस एक
1: वेल जी गजनी का एक सॉन्ग है, गुजारिश इसका देंगे, बाद दोबारा से बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। कहीं मत जाइएगा, आवाज की दुनिया में दोबारा से आपका और मेरा साथ स्टार्ट होगा रेडियो फजा 97.1 एफएम से।
0: कौन सा संदेश लाएगी, रिमझिम सी गुनगुनाएगी या प्यास अधूरी रह जाएगी।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं रनर्स लानली और आप सुन रहे हैं रेडी फॉर द 97.1 एफएम नोटिंगम से इस वक्त लाइव। अभी आप सुन रहे थे गुजारिश सॉन्ग जो कि गजनी मूवी का था। आमिर खान और आसिन पे इसको फिल्माया गया और ये जो सिंगर हैं इसमें जावेद अली हैं। गजनी मूवी जो है वो बड़ी खूबसूरत मूवी थी और ये मूवी जो है वो किस किस ने देखी हुई है आप मुझे बता सकते हैं, और इससे आपने क्या जो है वो हासिल किया, क्या सबक हासिल किया, भाई मैं क्या कहना चाह रहा था, क्या सबक हासिल किया आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि गजनी मूवी है जो है वो इसके अंदर एक अलग ही कॉन्सेप्ट था। इससे पहले जितनी मूवीज़ बनी वो एक अलग ही लाइन की थी, उसके अंदर जस्ट फाइट आपको नज़र आती है या फिर जस्ट रोमांस और उसके अलावा या फिर एक स्टोरी होती थी लव स्टोरी जस्ट।

0: फिर मुलाकात होगी। लेकिन जी उससे पहले हम जो हमारा आज का टॉपिक था उसको हम क्लोजिंग की तरफ लेकर जा रहे थे और हम ये फैसला करना चाह रहे थे कि आखिर कौन सी चीज़ जो है वो ठीक है और कौन सी चीज़ गलत है, यानी कि खामोशी जो है वो बेहतर है या फिर आपका जो है वो फट से जवाब दे देना ठीक है। हमने आज इसी चीज़ को बहुत सारे एंगल्स से देखा क्योंकि हर चीज़ जो है वो एक ही तरह से नहीं देखी जा सकती, क्योंकि आपका खामोश होना हर किसी ये मतलब नहीं कि आप अगला बंदा कुछ बोले जा रहा है और अपनी लिमिट्स जो है अपनी बाउंड्रीज जो है वो क्रॉस करता जा रहा है और आप खामोश रहें। मैं तो हर किसी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि अगर कोई मेरी इज्जत नफ्स को पामाल करे और मेरे ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम तराशी करनी शुरू कर दे कि वो भाई मेरे ऊपर बात हो ही ना और मुझे कहा जाए, तो बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं उस चीज़ का जवाब जो है वो ज़रूर दूंगा। लेकिन जी जहाँ रिश्तों की बात हो और जहाँ पर बात इतनी सेंसिटिव हो कि आप अगर बोलेंगे तो मामलात ख़राब हो सकते हैं और आपके ऊपर एलिगेशन भी ना लग रहा हो और आपकी इज़्ज़त को भी पामाल ना किया जा रहा हो, लेकिन कुछ इस तरह की डिस्कशन हो जहाँ पर आपको गुस्सा तो आए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपकी इज़्ज़त के ऊपर बात हो तभी आपको गुस्सा आए, लेकिन कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, कुछ इस तरह के मामलात होते हैं, कुछ इस तरह के रिश्ते भी होते हैं जहाँ पर उल्टी सीधी बातें हो जाती हैं भाई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली मैंने एक इवेंट अटेंड किया और वहाँ पर घड़ोली भरने की रस्म आपको पता होगा कि गांव में जो की जाती है, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। सर के ऊपर घड़ा रखा जाता है और शादी में मेहंदी से पहले ये रस्म की जाती है, मोस्टली मेहंदी वाले दिनों में की जाती है, लेकिन कुछ लोग जो है वो मेहंदी से एक दिन पहले जो है वो घड़ोली भरने की रस्म करते हैं। उसमें ये होता है कि जी आप जो दूल्हा है उसकी जो बहनें होती हैं वो सर के ऊपर पानी का जो घड़ा होता है उसको रखती हैं और वो लेकर जाती हैं कुछ रिश्तेदारों के घर जो उनके अजीज़ होते हैं, वहाँ से जाके वो पानी भरते हैं उस घड़े के अंदर और फिर वापस उसको लेकर आया जाता है। इसको कहते हैं घड़ोली भरना। इस रस्म को हमने देखा और मैं एक इवेंट जो अटेंड किया उसमें हुआ कुछ यूँ कि जी कुछ रिश्तेदार जो थे वो उस दिन जिस दिन उस लड़के की शादी थी उन्होंने नाराज़गी इस बात की बना ली कि आपने घड़ोली हमारे घर से क्यों नहीं भरी। इस चीज़ के ऊपर यकीन कीजिए इतनी बहस हुई इतने मामलात ख़राब हुए, लेकिन जो दूल्हा था उसने सारी बातें बर्दाश्त की क्योंकि उन्होंने जो अपना पॉइंट रखा वो बिल्कुल वैलिड भी था। कहीं ना कहीं दूल्हा भी अपनी बात पे ठीक था, कहता मैंने भाई एक घर चूज़ करना था, मैंने जब वो घर चूज़ कर लिया या हम लोगों ने हमारी फैमिली ने या हमारे ख़ानदान ने वो घर चूज़ कर लिया तो अब उसके ऊपर हम क्या ही बहस करें। लेकिन जी जिन लोगों के घर में वो नहीं गए वो लोगों का एतराज़ जो था वो बन गया। यहाँ पर आगे जो खामोशी उस दूल्हे की जानिब से इख्तियार की गई मेरे ख्याल से वो बिल्कुल पॉजिटिव थी और वहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन लेकिन लेकिन जी जहाँ पर आपकी इज्जत की बात हो कोई आपको टॉन्ट करना शुरू कर दे या फिर आपकी बाउंड्रीज जो हैं उसको वो क्रॉस करने की कोशिश करे तो मेरे ख्याल से वहाँ से आपको झटपट जवाब दे देना चाहिए कि भाई नहीं रुक जाइए सब्र कीजिए यहाँ से बाउंड्री क्रॉस ना कीजिए। ठीक है जी, हम देसी बंदे हैं और देसी बंदे जो हैं वो झटके से होते हैं, झटका स्टाइल होता है और जहाँ पर बात बुरी लग जाए वहाँ पर हम दो टोक बात आर या पार वाली कर देते होते हैं। खैर देसी कलाकार सोंगा जी, इसके बाद हमारे पास चंद लम्हे होंगे और उस लम्हों के अंदर हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे, तो सुनते हैं देसी कलाकार यो यो हनी सिंह की आवाज़ में और इस गाने के उस पार दोबारा से मुलाकात करेंगे। चंद लम्हे होंगे हमारे पास तो उन लम्हों को हम दोबारा कोशिश करेंगे कि अच्छे से बात करके आपसे इजाज़त लें, तो मिलते हैं जी इस गाने के उस पार। छड़ दो जी ये गल दुनिया के सोचेगी,
1: मम्मी डैडी दा भी डर दिल तो हुन काट दे,
0: बिल्कुल काट दो।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: Get ready to move.
1: It's all about the beat.
2: Wow, FM.
3: Only Tune Super Hit Channel.
4: Fizz on 97.1 FM.
5: ठहरिए जरा ये कमर्शियल तो सुन ले.
6: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
7: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ
8: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं. खैर तो है
7: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी.
8: ओहो मुबारकबाद बहुत जल्दी आ गया.
7: सारी नसीब दी गल है. मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी.
8: उनका नाम ही बता दें हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है.
7: AMH सॉलिसिटर्स होर कौन ओ वधिया ने दोस्ताना माहौल तेज ते जल्दी कम कर दे रहे सोने ते स्वागा ये क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने.
8: चलें उनका पता भी बता दें आपको तो जुबानी याद होगा.
7: हाँ जी क्यों नहीं. नॉटिंगम रोड न्यू बेसफोर्ड नॉटिंगम.
8: जबरदस्त मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए. नंबर क्या है.
7: लो जी ओ भी जुबानी याद है 0115-671-3677. प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने मुफ्ता मशवरा लो जी.
9: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115-671-3677.

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फजा 97.1 एफएम नॉटिंगम के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान, आपका होस्ट एंड आपका दोस्त उस्मान खान। वेलकम, खुश आमदेद जी हां, सब बिस्मिल्लाह पखैर आगे अस्ताल विस्ता आओ गाना दिल तराशे। उम्मीद वासी के जिस जहाँ जिस हाल में होगा खुशबाश होगा और अपनी जिंदगी को मजीद बेहतर से बेहतरीन बनाने के तगड़ों में मशगूल होगा। बेहद शुक्रिया आप तमाम दर समातों का ढलते खूबसूरत से शाम के सायों में मेरा साथ निभाने और अपने होने का एहसास मुझे दिलाने का। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग फजा 97.1 एफएम एंड देव आल्सो ऐप। आज के प्रोग्राम में मैं सिर्फ अकेला नहीं हूं बल्कि मेरे साथ एक अदद और खूबसूरत सी पर्सनालिटी मौजूद है जो कि किसी भी किस्म की तारीफ या तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन तारीफ या तारुफ करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वो इसलिए क्योंकि हम आप हमें देख तो नहीं सकते लेकिन आप हमें सुन सकते हैं, और जब आप हमें सुन रहे हैं तो जब तक हम आपको बताएंगे नहीं तब तक आप जान नहीं पाएंगे। अव्वल जनाब, बिना किसी देरी और दूरी के शामिल करते हैं हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद हैं, इनकी हाजिरी मैं चाहूंगा कि इनका नाम भी ये खुद ही अपने मुंह से बताएंगे तो शायद आपको याद आ जाएगा, क्योंकि बंदा बड़ी देर से फील्ड से हटा हुआ था और बड़ी देर के बाद कमबैक किया, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक इनको याद रखा होगा। मेरी मुराद किससे है जी? अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम अस्सलाम।
0: हाय हाय, इतनी फीकी हुई आवाज में कमबैक कैसे हो सकता है? जी हाँ जी, मैं चाहूंगा कि हमारे तमाम दर सुनने वालों को आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें। तारीफ मैं खुद कर लूंगा।
1: जी जरूर जरूर। एक्चुअली दिस इज वजाहत हाशमी, यू कैन से लाइक दैट देसी हिप हॉप आर्टिस्ट, पंजाबी आर्टिस्ट, मेलोडिक देसी हिप हॉप आर्टिस्ट। और मैं एक पंजाबी एज अ आपने कहा ना कि आप अपनी तारीफ खुद करें, अपना इंसान तारीफ कैसे कर सकता है?
0: आप तारीफ करवा दें, तारीफ मैं कर लूंगा।
1: दिस इज वजाहत हाशमी फ्रॉम जेहलम एंड आई एम डूइंग देसी हिप हॉप सिंस आई थिंक सो 5 years। आई एम बैक
0: After 5 years.
1: Yeah.
0: That's very nice. So, अच्छा हुआ जी जब नॉटिंघम में और हमारी इनसे मुलाकात हुई तो हमने कहा कि जब आपने कमबैक किया ही है तो फिर आइए हम ही आपको अपने प्लेटफॉर्म से लेकर चलते हैं आगे। सवजात, कैसा लगा मुझे सबसे पहले बताएं, हमारा स्टूडियो कैसा लगा?
1: यार आपका स्टूडियो वाकई वाकई वाकई बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा है, और इसका एनवायरनमेंट बहुत बहुत जबरदस्त है।
0: इतने पैसे मैं कौन ही देते? जनाब वजाहत हाशमी हमारे साथ हैं और एक बड़े खूबसूरत से पंजाबी राइटर हैं, पंजाबी सिंगर हैं और म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी नाम बना चुके हैं। बहुत कम लोग वैसे वजाहत आपको जानते होंगे, जो एशियन लोग हैं बड़े कम आपको जानते हैं।
1: नहीं, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि आप ये कह सकते हैं कि हर कंट्री के अंदर बहुत से लोग मुझे जानते हैं एज अ पंजाबी आर्टिस्ट।
0: बाई फेस कम लोग जानते हैं,
1: बाई फेस एक्चुअली वेल नाउन तो मैं सोशल मीडिया पे ऐसे ही हूँ, फेस ज्यादा चला हुआ है, बट उनको ये नहीं पता कि ये बंदा करता क्या है। मोस्टली जानते हैं कि ये एज अ आर्टिस्ट काम कर रहा है, मोस्टली जानते हैं कि ये एज अ मतलब एज अ इन्फ्लुएंसर लाइक
0: यूट्यूब पे उनको भी हम जरूर प्रोग्राम में गाहे पगाहे शामिल करेंगे। अगर आप इनको जानते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही
1: बिल्कुल ऐसा ही है
0: सर। जनाब अपने प्रोग्राम में शामिल किस तरह होना है तरीका अगर आपको बताए देते हैं तमाम लोगों का, बेहद शुक्रिया जो आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं आपको एक अदद नंबर बताता हूं, उस नंबर को नोट कीजिएगा, सेव कीजिएगा, देन व्हाट्सएप पर जाइएगा और वहां पर जाकर अपना खूबसूरत सा पैगाम जो है वो हम तक पहुंचा दीजिएगा, और जल्दी से मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन कर लीजिए। हमारे और आपके दरमियान रबते का जो नंबर है इसको कहते हैं 01157100971। आई अगेन रिपीट, दिस नंबर इज वेरी स्लोली 01157100971। बस इस नंबर को नोट कीजिए, सेव कीजिए और फिर व्हाट्सएप पर चाहिए कोई भी पसंदीदा गजल, नज़म, चंद अशआर, कोई कोटेशन, कोई बात, कोई सलाम, कोई दुआ या फिर वजाहत के नाम कोई भी खूबसूरत सा पैगाम लिख कर भेज दीजिएगा। आवाज़ दोस्त पहले रहता गुनगुनाता समझनाता हुआ आपका पैगाम जैसे ही हमारे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर जगमगाएगा हजूर सुनते ही तमाम तर खूबसूरत सी समातों की नजर हो जाएगा। सो व्हाई यू वेटिंग, जल्दी से कीजिए मैसेज और बताइए अपने आने का होने का पता और एहसास दिलाइए। अगर रेडियो की ट्रांसमिशन अब तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही तो आप हमें सुन सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू। उसके लिए प्यारा सा एक गूगली होता है, गूगली पर जाइए और वहां पर जाकर लिखिए radiofaza.co.uk। आने वाली पहली वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा और हमें लाइव सुन लीजिएगा। इसके अलावा हमारे तमाम तरह आरजेस की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी, कौन सा आरजे किस टाइम पे कौन सा प्रोग्राम करता है मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी, कलेक्ट कर लीजिएगा। इसके भी अलावा थर्ड ऑप्शन अगर आप चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो फजा 97.01 FM के नाम से। खूबसूरत से पर्पल बैकग्राउंड के साथ एक गोल्डन माइक आपको नजर आएगा, बस उसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह आसानी आप हमारे रेडियो को ट्यून करके सुन सकते हैं, बशर्ते इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। लीजिए एक और रास्ता आपको दिए देते हैं और ये रास्ता है वो जिस पर आप इस वक्त रवा दवा हैं, यानी कि अगर आप गाड़ी पे हमें सुन रहे हैं तो आप फजा डैप पर भी हमें ट्यून कर सकते हैं और डैप पर आपको मजीद की स्ट्रेंथ के लिए वॉइस सुनने को मिल जाएगी। ये वो तमाम तरह रास्ते हैं जिन रास्तों के थ्रू आपने हमारे ड्राइव टाइम प्रोग्राम में शामिल होना है और अपने होने का एहसास हमें दिलाना है। बढ़ते हैं वापस वजाहत की जानी। वजाहत मुझे बताइएगा कि पहली इब्तदा कहाँ से हुई?
1: वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको डिटेल में बताया जाए।
0: सोनिया 2 घंटे ना साढ़े को लंबा
1: ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ अप्रॉक्स, मतलब राइटिंग मेरी जो है, मैं जो लिख रहा हूँ वो तकरीबन आई थिंक सो चाइल्डहुड से, लेकिन कभी मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आप मतलब कि मैं लिख भी सकता हूँ या मतलब ये, क्योंकि मैं वर्ड्स के साथ खेलता था।
0: तो
1: मुझे किसी ने बाद में समझाया, मतलब जारी बात है आप जब स्टार्ट करते हैं तो आप जारी बात है
0: कोई ना कोई
1: छोटे
0: तो
1: होते हैं आप, बिल्कुल पता नहीं होता। मैं जब टीन एज मतलब लाइक आई वाज इन आई थिंक द 5th or 6th क्लास तब से
0: मतलब बुढ़ापे तक पहुंच गए और अभी तक लिख रहे
1: अभी तो जवानी चल रही है। कहते हैं मर्द 30 के बाद जवान होना शुरू होता है, मैं भी 30 का हुआ ही नहीं।
0: अच्छा बेटा आपने जूस पी ले?
1: जी पी लेंगे।
0: ओके सो
1: तो ऐसे अब हम कर रहे थे तो मुझे नहीं पता था कि यार मैं मतलब हर इंसान को ना आपको नहीं पता चलता कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपको हमेशा साथ वाला बताता है, आप पॉलिश करता है।
0: बिल्कुल ऐसे
1: पॉलिश तो आप खुद करते हैं, सॉरी वो आपको ना आपको तारुफ करवाता है आपका,
0: बिल्कुल
1: आप ये अच्छा कर रहे हो करो। म्यूजिक का शौक मुझे आप ये समझ लें कि अगर आपको एक रास की बात बताऊं तो मैं जब मतलब मैं जिस फैमिली में जिस फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं जिस फैमिली में पैदा हुआ ना वो छोटा सा बड़ा एक आर्टिस्ट फैमिली है ना,
0: दूर दूर तक म्यूजिक का कोई ताल्लुक
1: नहीं था। हमारे घर में टीवी नहीं होता था, रियलिटी है, हमारे घर में टीवी था मैं जब मैं आया।
0: अच्छा
1: मतलब साथ मैं आया तो साथ डिजिटल ज़माना देख लिया था।
0: दैट्स वेरी नाइस।
1: तो मुझे याद है कि सज्जाद अली साहब का फर्स्ट सॉन्ग था जो मेरे कानों में जिसने रस खोले, प्यार नसीब बना ले मिलेगा जरूर। आई वाज आई थिंक सो 2, 3 or 4 years आई थिंक सो यस। और मैंने जनाब जब ये सुना पहली दफा और मैं उस पे डांस करना स्टार्ट कर दिया।
0: इट्स वेरी नाइस, टैलेंटेड बच्चा।
1: बस वो उसके बाद उनको लग गया था कि हमारे घर में कोई ऐसी चीज आ चुकी है जो पीढ़ी बदल रही है।
0: ओके सो यहां से आपकी इब्तिदा हो, यानी कि आप राउंड अबाउट कोई 8 से 10 साल के थे जब से आपने
1: जब से यही कुछ कर रहा हूँ
0: यही कुछ करना शुरू किया।
1: हां हां हां और ये म्यूजिक ये ट्रैक मैं कहता हूँ आज भी कई दिलों की जान है। आज भी मैं जब सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं दोबारा यंग बच्चा बन गया हूँ छोटा सा।
0: सो आइए आपके बचपन को थोड़ा सा दोबारा से उजागर करते हैं, आपके बचपन की यादें, और ना सिर्फ आपको बल्कि हमारे जितने इस वक्त लिसनर्स हमें सुन रहे हैं और जिन जिनका ये मोस्ट फेवरेट ट्रैक रहा है, आप सभी की नजर ये खूबसूरत सी आवाज इस आवाज को इस पार होगी। आपसे फिर से मुलाकात रहेगी हमारे साथ साथ। मुझे कहते हैं जनाब उस्मान खान और मेरे साथ मौजूद है वजाहत हाशमी और इनका मजीद तारीफ तो मैं नहीं करूंगा, तारुफ मजीद अभी बाकी है, वो आगे चल के लेंगे। फिलहाल इंजॉय कीजिएगा इस म्यूजिक को।

0: जी हजन आप लौट के आ चुके हैं वापिस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारे साथ साथ हैं। मुझे कहते हैं उस्मान खान और आज के हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं इनको कहते हैं वजाद हाशमी और बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ के लाए हैं और इस उम्मीद पर लेकर आए हैं कि अब कम बैक किया है तो ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है। वजाद क्या ऐसी क्या वजह है कि जो आपने इतना अरसा इस फील्ड से गायब रहे?
1: एक्चुअली पता क्या बात है कि मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ ना पाकिस्तान से,
0: अच्छा
1: वहाँ पर हम जो मैं बेसिकली जेहलम से बिलोंग करता हूँ और जेहलम में जिस दौर में हम ये काम कर रहे थे तब उस टाइम इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि आप म्यूजिक को उस तरह लेके चल सकें जैसे आप लेके चलना उनको वहां से कभी कंप्लेन नहीं आई तो उन्होंने
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: हिट म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, पोएट्री, न्यूज एंड हेल्थ, ऑल अंडर वन रूफ। आवर रेडियो स्टेशन सरपासिंग ऑल बाउंड्रीज एंड कीपिंग यू कनेक्टेड। इट्स रेडियो फजान 97.1।

0: देखिए वो तो मेरा स्टार्टअप था जब मेरा फर्स्ट ट्रैक आया, और मुझे लिटरली इतना नहीं पता था कि ये इतना आगे जाएगा, क्योंकि वो एक सिर्फ जहलम के लिए मैंने बनाया था. बिकॉज मैं और मेरे एक अजीज भाई, बड़े मेरे बड़े भाइयों की तरह, तो हम दोनों भाई जब कर रहे थे तो मुझे वो कहते हैं कि यार तू क्या करना क्या चाह रहा है. मैंने कहा यार हम ये गाना करेंगे, ऐसे करेंगे, तो वो मुझे कहते हैं ट्रैक करने का तरीका क्या होगा. मैं पाकिस्तान में था, 2021 की बात है ये. अब वो क्या होता है कि आपको वो स्टोरी सुनाता हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा, कि एक बंदा मुझे ये भी कह रहा है कि यार तू कर सकता है ये गाना, तुमने देना है, और वो बंदा फिर लोगों से चेक भी करवा रहा है कि क्या ये ठीक गाया इसने, क्या इसके लिरिक्स ठीक है.
1: ओके, हम इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक हमारे दरमियान आ रही है, तो हम चाह रहे हैं कि आप तमाम लिसनर्स इस ब्रेक को एंजॉय कीजिएगा, लौट कर वापस आते हैं.

0: जी हाँ जनाब, आपने सुना ये खूबसूरत सी आवाज और खूबसूरत सा ट्रैक इस, ये थी जी वजाहत हाशमी की आवाज। और वजाहत साहब कैसा लगता है अपना ही गाना सुन के?
1: हाँ बहुत अच्छा लगता है, कभी कदार मैं भी दिल करता है कि मैं नवा कदू करना है।
0: जब ये गाना निकाला और माशाल्लाह जबरदस्त किस्म के इसके व्यूज हैं और कमाल के आपके इसकी रही जर्नी, कितने लोगों ने पसंद नहीं किया?
1: नहीं, वो जो जिन्होंने पसंद नहीं किया वो तो मेरे सामने आए नहीं ना।
0: अच्छा,
1: उन्होंने बस पीछे से वादे लगवाई हैं क्योंकि पॉलिटिकल गाना हो गया था हमारे कुछ अजीज से फैमिली के, ठीक है, वो वहाँ के MLA और MP है, तो दैट्स व्हाई वो आगे थे। तो हमारे जो ओपोनेंट पार्टी थी तो वो मतलब वो कहती थी कि उन्होंने फिर मुझसे बात की, उन्होंने कहा अबिला जी साढ़ा भी गाना करो ना, मैं कहीं गल सुनो मैं करते दवा, उस तो बाद अल्लाह ना करे आपस ही होगी ना पेड़, तो तुम मैंने मुफ्त ही रगड़ छोड़ना तो अजय मेरा पूरा करियर है, तो मैं चक्कर में अपना करियर नहीं दाते।
0: बिल्कुल जबरदस्त, मतलब उस वक्त पैसे को नहीं देखा?
1: नहीं, आप यकीन करें पैसे को नहीं देखा, हमारा बड़ा एक्सपेंस हुआ इस गाने के ऊपर और हमें स्पॉन्सर भी बहुत अच्छे हुए पहले गाने के ऊपर।
0: बच्चे छोटे तो ही
1: नहीं, बच्चे तो नहीं हुई,
0: पल्ले लगे
1: सर, पल्ले से लगे। लेकिन इसका मैं एक बेनिफिट कहता हूँ कि यार अल्लाह का शुक्र है मेरा नाम बहुत अच्छा बना, उसके बाद मुझे गाने के बाद मुझे जो उसका अप्रिशिएट किया गया ना वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो डिफरेंट वेज के अंदर आया है, तो वो आप मैं कह सकता हूँ कि हाँ मुझे बचत हुई।
0: जबरदस्त हो गया, मतलब पैसे को साइड पे रखकर
1: बाद में पैसा आया,
0: फेम
1: अच्छा बाद में पैसा आया लेकिन डिफरेंट वेज से, लाइक जैसे अभी हम रेडियो पे बैठे हुए हैं, अब यहाँ से अगर हम किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आप मुझे यहाँ किसी ने सुना है वो मुझे वहाँ पे आगे अप्रिशिएट कर रहा है, वो अप्रिशिएट कई वेज के अंदर होता है क्योंकि मैं एक होस्ट भी रहा हूँ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो जब मैं होस्ट रहा हूँ तो फिर वहाँ पर हमें जो लोग जानते थे तो वो फिर उन लोगों ने वहाँ पे आके अप्रिशिएट किया मेरे यूके के, मैं जब पहले पाकिस्तान में होता था तब मेरे यूके के बहुत अजीज थे यहाँ पे और वो लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने यार ये लोग, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप उनको बैठ के अप्रिशिएट कर देना, आर्टिस्ट जिंदा है दांत के ऊपर, वो क्लैप के ऊपर जिंदा है, उसकी जब तक आप उसको क्लैप करते रहो दैट्स इट, उसको नहीं चाहिए आपके पैसे।
0: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही दाद ही चाहिए होती है। खैर मजीद आगे बढ़ेंगे और आपकी बातों से अब मुझे ये महसूस होने लगा है कि आपको जो है वो भूख जो है वो है फेम की।
1: हाँ जी,
0: कौन पीरल पाजी नहीं आना,
1: नहीं बर्गर मंगा लो।
0: सुबह जनाब आपने आवाज सुनी और मैं चाहूंगा कि अब थोड़ा सा हम अपने लिसनर्स को आपकी ओरिजिनल आवाज, वैसे तो वो भी ओरिजिनल थी लेकिन वो
1: नहीं, नहीं मजे की बात है, वो रफ वोकल्स से।
0: अच्छा वो रफ वोकल्स,
1: ये असल में मैं आपको बता रहा हूँ यूके आया इस वजह से हूँ कि जब हमने ये गाना करवाया तो जब हमारे एक अजीज है उन्होंने किया, वो बेसिकली करते थे क्लासिकल, उनके लिए हम ये ट्रैक लेके चले गए, उन्होंने तो कहा जी भाई मसले कोई नहीं मक्खन चुवाल हरकत डांगे, मैं कह जी कड़ो। अच्छा। वो जो तो जनाब गाना तैयार होना शुरू होया तो जनाब वो ऑटो ट्यून लावन आवाज बह जावे, मैं उन्होंने कहा ऑटो ट्यून ना लाओ सानू जान दे जन्म जो है उंजी है, मैं कह नहीं जी, फिर असि करते करते मैंने रफ वोकल्स हम लेके आए थे ना पहले दिन रिकॉर्ड करके बीट के ऊपर, ये वही उसी के ऊपर वीडियो लगा
0: था
1: सर जी, कुछ भी नहीं लगा देते, हाथ हो गया साढ़े नाल
0: बंदा सी।
1: हां नहीं मतलब देखिए एक गाने की होती है वर्थ, जैसे अभी आपने यहां सुना आपको बहुत मजा आया गाड़ी में, आप सुनते हैं आपको बहुत मजा आता है, लेकिन जब आप एक इसको प्रॉपर मॉनिटर करते हैं ना, आप म्यूजिक स्टूडियो में बैठ कर सुनते हैं तो आपको फील होता है कि यार गाना बीट से ऊपर चल रहा है, लाइक माइनर सा फील होता है। तो देखिए जो रियलिटी है वो रियलिटी है भाई, हम अपने आप को कहें जी कि हम जग्गू मारते पता नहीं कहें ऐसी हो जाए कोई नहीं, मेरा
0: शुरुआत है और बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत जबरदस्त शुरुआत है।
1: हाँ,
0: ये इस चीज को वही शायद समझ पाएगा जो बहुत ज्यादा डीपली म्यूजिक को समझता है, नॉर्मली नहीं समझ में आती।
1: सर जो बंदा फर्स्ट टाइम करे ना, मैं कहता हूँ कि ये तो फील्ड ही ऐसी है, इस फील्ड के बारे में कहा जाता है कि यार आपके पास अगर पैसा है ना तो आप लगाइए अपनी जात के ऊपर, ये आपने आराम से चलना है, अगर आप कहें ना कि अभी चल जाएंगे आप, नो नो नो,
0: बिल्कुल म्यूजिक
1: तो पहले ही चल पड़ा अल्लाह के हुक्म से।
0: बिल्कुल ऐसे ही, म्यूजिक कहा जाता है कि जी नवाबों का शौक है,
1: नवाबों का शौक है जी, हम नवाब भी तो है।
0: आप बिल्कुल जी, आप नवाब मैं बर्गर मेरे को खा लेंगे। सवेल जी हम चाहेंगे वजाहत के अब आप अपनी खूबसूरत सी आवाज नहीं है चले इट्स ओके, लेकिन
1: भाई जी मेरा गला नाक भाग गया इस टाइम पे, मैं शो करूंगा तो आवाज नहीं निकलती।
0: चले जी हंसी मजाक अपनी जगह पर,

0: सिर्फ
1: मेरे मेरा अपना या किसी का
2: नहीं, आपका अपना
1: मेरा अपना, मेरे अपने तो सारे इस तरह के हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको कुछ
2: बस ध्यान करें चोरी ना हो जाए।
1: पहले पहले मेरा क्रेडिट जाता रहा, मैं बड़ा एहतियात कर रहा हूँ, मैं आपको सरकार ही सुना देता हूँ। मेरा ख्याल है सो मच गुड फॉर मी,
2: चाह रहा था कुछ चोरी
1: सर आप हुक्म करें, आपको लिख के देते हैं।
2: मसला ये है ना, वो मजा नहीं आता यार, जेड़ा खो के खांदा मजा।
1: अच्छा वही बात, मनी प्लांट आ रहा था चुपके ले आने जाते, कोई बरकत हो है चोरी का फल है नहीं हो रहा भाई जी,
2: समझ गई।
1: सर जो भी सरकार सुनाते हैं, मैं आपको अपनी आवाज में सुनाता हूँ। मैंने एक कॉन्सर्ट किया था, वहां पे मैंने परफॉर्म किया था पाकिस्तान के अंदर, तो तब ये मैंने किया था, तो मैंने इसकी ट्यून चेंज कर दी थी, क्योंकि सारी बात है कंधे ने जिदे का आधा लिखा हुआ जो मर्जी देना।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो
1: सो मुनाफका दा नाम देके पाई जांदे शोर यारो, आहुतां नूं दसां साडे शहर दा की जोर, असी बंदे लाजवाब।

0: दान पाड़ पाड़ सुटते ये बड़े परदान।
1: आपने जब ये गाना शुरू किया तो मेरे दिल की तके पैन चलन दिए हैं
2: जी। और
1: तुसी आंखें चोरी ना हो
2: जाए। नहीं, मैं इसको प्रॉपर्ली मेरा अपना यही गाना है, इसकी कंपोजिशन मैंने चेंज की।
1: I'm just kidding। और चलें आगे बढ़ते हैं जी, इसको हम आगे मजीद आपसे सुनने वाले हैं।
2: जी जी, ये मैं तो आपको मजीद चीजें सुनाता हूं।
1: अभी हमारे पास पूरा एक घंटा मौजूद है और इसे एक घंटे में तुसी
2: एक घंटे जगह तुसी ना बोलो तो मैं पूरा घंटा गाने सुना देना तनु ही कर लो।
1: और वजाहत क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है?
2: ना बड़ा एहसान ज्यादा बड़ा करो।
1: ओके जी, आइए अब हम थोड़े से अपने लिसनर्स की जानिब चलते हैं और अपने लिसनर्स को भी एक खूबसूरत सी आवाज सुनाते हैं। वजाहत की फरमाइश पे बिच्छू फिल्म से लिया गया
2: ये। ये इसकी मैं आपको स्टोरी भी छोटी सी सुना दूं।
1: हाँ,
2: इसकी स्टोरी छोटी सी ये है कि जब मैं छोटा सा था तो ये उस टाइम नया नया गाना आया था, तो मेरे ना कजन के सामने उनकी शॉप थी तो वो उनका डेक लगा होता था।
1: अच्छा,
2: तो मैं उससे मजा नहीं पाया था। उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप बहुत अच्छी होती थी। ये जनाब गाना चल रहा था तो अक्सर वो गाना नहीं लगाता, तो मैं आवाज गाता था बाबा को, बाबा वो गाना नहीं लगा केड़ा, और टोटे टोटे ला रहा। फिर आगे वाला साहब उनको कहते थे और टोटे टोटे लाओ, साथ यहाँ से स्टार्ट होता था।
1: जबरदस्त हो गया। सलीजे जनाब, आप भी दिल चोरी साडा हो गया की करिए की करिए, यही वाला है ना?
2: नो, दिल टोटे टोटे हो गया।
1: अब मैं तो सोच रहा था दिल चोरी हो ही गया।
2: नहीं, साडा देगी पड़गल फड़ लिया।

0: मेरा ख्याल है कि अब जब चल ही गया है तो फिलहाल जी दिल चोरी तो हो ही चुका है और आपकी आवाज सुनने के बाद जितने लोगों का दिल चोरी हुआ है वो उसका हिसाब आपसे बाद में लिया जाएगा।
1: आप मेनू ना ईमेल कर दे
0: बिल की पर्ची ई मेल
1: करा ठीक
0: जो अस्पताल भी देना पेगा
1: भाई जी पहले बड़ा हाथ तंग
0: जगह जगह इस म्यूजिक इसके उस पार होगी आपसे मुलाकात तो रहेगा हमारे साथ मुझे कहते हैं उस्मान खान आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डैब और आज के मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वजाहत हाशमी और कमाल की आवाज़ कमाल के सिंगर मजीद आप इनको सुनेंगे लेकिन इस आवाज़ के उस पार सो रहिएगा हमारे साथ स्टे ट्यून्ड।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: Ready to move.
8: It's all about the beat.
9: Wow, FM.
10: Only tune Super Hit Channel.
11: Fizz on 97.1 FM.
12: Haji. Mudda sadhuwa da.

0: जी हाँ जनाब, वन सेकंड वेलकम बैक। लोड करा चुके हैं वापस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारे साथ साथ और हम आपके साथ साथ हैं। फजा 97.01 एफएम को ट्यून प्लस यूज करने का बेहद शुक्रिया। और आज हमारे स्टूडियो में दो नहीं तीन खूबसूरत सी पर्सनालिटीज मौजूद हैं। उस्मान खान तो हैं ही खूबसूरत, और साथ वजाहत इसलिए खूबसूरत है कि ये बिल्ले हैं। और तीसरे हमारे साथ मौजूद हैं एक और खूबसूरत सी पर्सनालिटी, जबरदस्ती आवाज और खूबसूरत सा अंदाज, यानी कि उस्मान खान के सामने एक बंदा मौजूद है जिनको हम प्यार से आजम मौजूम कहते हैं। और मौजूम की आवाज़ काफ़ी टाइम से आपने नहीं सुनी, लेकिन अनकरीब आप इनकी आवाज़ दोबारा सुनेंगे, और उम्मीद है कि जब आप दोबारा सुनेंगे तो आप इनको भरपूर तरीके से प्यार और साथ देंगे। फिलहाल हम चलते हैं वजाहत की जानिब। वजाहत, अब तक हमारा एक घंटा गुजर चुका, कैसा फील हुआ?
1: अमेजिंग, अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम किसी के पास आके बैठा हूँ। और मतलब आप भी बहुत माशाल्लाह टॉकटिव हैं, और आपके साथ बेसिकली आप, मैं एक देखिए मैं भी मीडिया का बंदा हूँ तो मुझे इतना पता है कि आप कहीं जाते हैं ना तो आपका होस्ट के साथ इंटरेक्शन बड़ा जरूरी होता है कि वो कैसा है। अगर तो होस्ट थोड़ा सा अड़ियल घोड़ा है ना, लाइक वो थोड़ा सा मतलब रूड बिहेव करेगा, तो लाइक उससे आपको मजा नहीं आता। जब आपको मिलती है ना, आपको गैदरिंग मिलती है यारी दोस्ती वाली, तो आप फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं,
0: खुल के आप बोल सकते हैं। और ये बड़ी ऐसी चीज होती है कि आपका होस्ट जो है वो सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है।
1: अब बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि देखिए होस्ट का काम है एलैबोरेट करवाना चीजें। अब हो सकता है कुछ चीजें आप मुझसे ना पूछें तो मुझे याद भी नहीं रहेंगी, मैं बताऊंगा भी नहीं।
0: बिल्कुल ऐसे, मैं चाह रहा हूँ कि आप मजीद थोड़ी सी मेरी तारीफ करें। तो
1: माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत है, हसीन जमीन है, पिक्चर लगवाए आप,
0: तो पता लग गया। बाकी सुनने वाले
1: हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको।

हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम नॉटिंघम, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जलाल बुखारी। और मैं वापस आ गया हूं आपका अपना प्रोग्राम मूडी मंडेज लेकर। और आज का आपका और मेरा जो है वो साथ रहेगा शाम 8 बजे तक। सो 6 से 8 तक हमारा ये शो चलेगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा ये कंटिन्यू रहे और चलता रहे। बीच में कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, सेहत की वजह से कुछ ब्रेक्स आ गई और अब उम्मीद करता हूँ कि थिंग्स आर लुकिंग गुड और प्लान कर रहा हूँ कि इस शो को अपना रेगुलर एवरी मंडे आई विल बी हेयर। और आज का जो शो है उसके हवाले से मैं कहूँगा कि आज कुछ जो है डिस्कशंस करेंगे, कुछ गपशप लगाएंगे, आप लोगों से बातें करेंगे और डिस्कस करेंगे एक जो मूवी आई है अभी रिसेंटली रिलीज हुई है दृश्यम पार्ट 3, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इंग्लिस्तान और एक्सेल्सियर नवाब जो हैं वो लेकर आ रहे हैं रेडियो फ़ज़ा के तावन से फोक और सूफ़ी म्यूज़िक नाइट। और जी हाँ, ये सूफ़ी एंड फोक म्यूज़िक जो नाइट है इसमें परफॉर्म करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम फोक सिंगिंग में जनाब शौकत अली साहब मरहूम, उनके साहबजादे हैं इमरान शौकत अली और वो आजकल यूके के टूर पर हैं। और हमने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो क्यों वेस्ट की जाए और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो नॉटिंघम में हमारे ऑडियंस को टाइम दे। तो इंशाल्लाह फ्राइडे 6th of November 2026 at 6:30 PM जो है हमारी परफॉर्मेंस होगी इमरान शौकत अली खान साहब की। और इसके साथ साथ हम और भी परफॉर्मर्स जो हैं वो इसमें इवेंट में परफॉर्म करेंगे, हमारे अपने नॉटिंघम के अपने मुनीर चौधरी साहब वो परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान थिएटर टीवी का बहुत बड़ा नाम शाज़िब मिर्ज़ा वो परफॉर्म करेंगे, साथ साथ अज़र रंगीला वेरी टैलेंटेड मिमिक्री आर्टिस्ट कॉमेडियन और बहुत ही अरसे से टीवी पे काम कर रहे हैं वो, और उसके साथ अदनान अमानुल्ला वो भी हमारे साथ परफॉर्म करेंगे इस शाम को। तो आप लोग भी आ सकते हैं और इस शाम को खूबसूरत बना सकते हैं। टिकट्स जो है वो इवेंट ब्राइट पे अवेलेबल हैं और अभी आजकल जो है वो ऑफर चल रही है बाय वन गेट वन फ्री, बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में ये टिकट मिल रही है, ओनली £20 ईच। और बाय वन गेट वन फ्री लेंगे तो £10 में आपको ये टिकट मिलेगी, इससे सस्ती सिर्फ खामोशी। और ये जो शो है ये ऑब्वियसली ऑन फ्राइडे 6th of November को होगा और इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं ऑब्वियसली इंग्लिस्तान और एक्सेलसियर नवाब, उसके साथ साथ स्पॉन्सर्स हैं इन्फिनिटी स्विच, मदीना ट्रैवल नॉटिंघम, हयात वेडिंग डेकोर और यूनिक फाइनेंशियल सर्विसेज। और आप डेफिनेटली अगर इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपनी इवेंट ब्राइट पे टिकट बुक कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो फजा 97.1 एफएम की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और उधर भी अपडेट ले सकते हैं। तो जी चलते हैं अपने पहले ट्रैक की तरफ और एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है और ये गाना भी हम इमरान भाई से सुनेंगे जब वो आएंगे। और शौकत अली साहब का एक बहुत ही सुपर डुपर हिट सॉन्ग है और ये सॉन्ग जाता है कुछ ऐसे कि मैं विलायत कानू आ गया।

0: जी मैं वलैत कानू आ गया और उम्मीद है कि आपने ये गाना जो है वो एंजॉय किया होगा जितना मैंने इसको एंजॉय किया है. बहुत ही खूबसूरत ट्रैक. और इमेजिन करें कि इमरान भाई हमें जो है ये गाना सुनाएंगे हमें लाइव अपने म्यूजिशंस के साथ और अपनी खूबसूरत आवाज़ में. तो बिल्कुल जी, एक बहुत मज़े का समा होने वाला है 6 नवंबर को. और उसके साथ साथ अब हम बात करते हैं मूवी दृश्यम की. अगर तो आप लोगों ने मूवी देखी है, किस किस ने मूवी देखी है आप मुझे बता सकते हैं. द नंबर टू कॉल इज 0115710091. अगर ये आपने मूवी देखी है तो बताएं कि ये मूवी कैसी है. मेरा प्लान है मैं आज रात ये मूवी देखने जा रहा हूँ. तो कुछ फीडबैक, कोई स्पॉइलर अगर कोई कोई देना चाहे इस मूवी से रिलेटेड तो बिल्कुल मुझे दे सकते हैं. और गाने बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस पूरी मूवी में बहुत कम गाने हैं. लाइक यू नो, इवन इफ वी टॉक अबाउट पार्ट वन पार्ट टू, आई थिंक पॉसिबली जस्ट वन सॉन्ग ईच. और इस वाले में एक जो है फाइनल पार्ट है द कंक्लूजन, इसका एक गाना है गेम ओवर जो कि आपके समातों की नज़र करेंगे. तो जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. और रिसेंटली 2 अक्टूबर गुजरी है और 2 अक्टूबर के हवाले से जितनी मीम्स इस पिछले जब से ये सीरीज़ रिलीज़ हुई है तब से वायरल है वो इस 2 अक्टूबर को भी ऐसा ही हुआ. सब फोन्स जो थे उनमें मैसेजेस आए कि जी आज 2 अक्टूबर है, आज के दिन जो है वो हम लोग पंजी गए थे सत्संग में. तो किस किस को ऐसे मैसेजेस आए हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं. नंबर टू कॉल इज़ 0115710091. बिल्कुल 2 अक्टूबर जो है वो तारीख की में एक ख़ास अहमियत रखता है सिंस द मूवी हैड कम आउट. और इसकी वजह है फिल्म दृश्यम. और अब तो बहुत से लोगों को याद हो चुका है कि 2 अक्टूबर को विजय सावगलकर अपने अहले खाना के साथ स्वामी चिन्नानंद के आश्रम में सत्संग में गए थे और वहाँ पाव भाजी भी खाई थी और 3 अक्टूबर को वो वापस आए थे. तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. और उसके बाद ऑब्वियसली फिल्म की रिलीज़ की तारीख भी अब इस कहानी का हिस्सा बन चुकी है. और इस साल ऑब्वियसली ये जो मूवी है ये 2 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी अजय देवगन और तब्बू की अदाकारी जो है इससे सजी इस फिल्म दृश्यम की तीसरी और आखिरी किस्त भी इस यादगार तारीख यानी 2 अक्टूबर को रिलीज़ हो चुकी है. बॉक्स ऑफिस जायजों के मुताबिक ये अदाकार अजय देवगन की सबसे कामयाब ओपनिंग देने वाली फिल्म साबित हो रही है. 2 दिन में फिल्म ने 100 करोड़ के बिजनेस का संग मील अबूर कर लिया है. 2022 में कोविड की वजह से OTT प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए असर और नाजरीन की बदलती आदत के बावजूद दृश्यम 2 वो अहम फिल्म साबित हुई जिसने नाजरीन को दोबारा सिनेमाघरों तक खींचा था और फिल्मी सनत में नई जान डाली थी. दृश्यम 2 के अगर ग्रॉस इनकम की बात करें तो उसने 345 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी. तो यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कैसे एक आम आदमी एक आम खानदान के इस गैर मामूली कहानी में ऐसी क्या कशिश थी. लोग बार बार इस सनसनीखेज मामले को जानने के लिए खींचे चले आते हैं. और फाइनल जो है ऑब्वियसली इसका जवाब जो है वो पार्ट 3 में मिलेगा. बल्कि इस पूरी कहानी में पोशीदा है कि जिसका आगाज तकरीबन 13 बरस कबल मलयालम सिनेमा से हुआ था. जी हाँ बिल्कुल, ये मूवी जो है ये आई वॉन्ट से कॉपी बट रीमेक इन हिंदी ऑफ मलयालम मूवी जिसके 3 पार्ट्स आए थे और ऑब्वियसली वो कंक्लूड हुए थे. और सेम जो मूवी है सेम स्क्रिप्ट जो है वो उसको अजय देवगन ने लिया था और अपनी मूवीज़ में जो है वो उसकी अपनी बॉलीवुड मूवी बना ली थी. तो अभी जो है ब्रेक पे जाने से पहले हम गाना सुनते हैं गेम ओवर.
1: उसने हर किसी को ये कहानी अपने नज़रिए से देखने पर मजबूर कर दिया. तभी तो ये कहानी में वो गलत होके भी हीरो है और हम सही होके भी विलेन.
2: तुझे तो सब की खबर है अगर मगर है सफर में सफर है कांटे की डगर है हर कदम कबर है हर जगह मर्डर है सामने खूनी है झांकर अब अगले रह गया अकड़ में नहीं आया पकड़ में कैसी दिनचर्या के अकल पे पत्थर है जनवरी शक्कर आया अक्टूबर है मुके और थप्पड़ नी

0: जी वेलकम बैक नॉटिंघम। और अब हम जा रहे हैं एक कॉल की तरफ, और ये जो कॉल है बहुत ही सरप्राइज कॉल है। और ये कॉल किसकी है सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ लिसनर्स, ये हैं हमारे अपने इमरान शौकत अली भाई, और ये हैं हमारे साथ लाइन पे। इमरान भाई क्या कहेंगे शो के हवाले से, 6 नवंबर को नॉटिंघम में होने जा रहा है।
1: जी अल्लाह भाई, सबसे पहले तो तमाम होने वाले मेरे बहन भाई ग्रुप जो है उनके शुक्रत में सलामत करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि नॉटिंघम के बहुत ही प्यार मेरे बहन भाई ग्रुप मेरे काबे इकराम, मैं बहुत अच्छे के बाद नॉटिंघम में परफॉर्म कर रहा हूँ, और मुझे इसी बात का इंतजार था कि मैं किसी तरीके आप लोगों के दरमियान हूँ, और जो बात है वो मैं चूंकि लास्ट टाइम जब मैंने परफॉर्म किया था तो डॉक्टर साहब परफॉर्म किया था नॉटिंघम में
0: जी।
1: और बड़ी बात ये है कि मैं एक बहुत बड़े लेजेंड, बहुत बड़े लेजेंड जनाब आसिम बुखारी साहब के दस्ते जिगर, मेरे भी बड़े फेवरेट एक्टर और बहुत कमाल के इंसान है, मैं उनसे मुखातिब हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ जो इस वक्त पूरी दुनिया में मेरी और अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं।
0: ये आपकी मोहब्बत है इमरान भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अभी एक आपका बकायदा इंटरव्यू जो है ना वो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में करूंगा, अभी तो मैंने आपको मुझे पता है ऑन द स्पॉट रखा है, और बिल्कुल ये एक अचानक वाला काम है, लेकिन नेक्स्ट वीक में और उसके आने वाले वीक में इस शो से बेसिकली 6 नवंबर से पहले पहले जितने मंडेज आएंगे और मेरा शो चलेगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको कुछ ना कुछ जो है ना डिस्टर्ब करता रहूँगा, ताकि जो ऑडियंस है उनको भी पता चले कि आप आ रहे हैं। और हमने आज जो है वो इसका ऑब्वियसली टिकट लॉन्च किया है, और उसके बाद से माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आना शुरू हुआ है, लोगों का बहुत से मैसेजेस और कॉल्स आने शुरू हो रही हैं, तो इंशाल्लाह
1: हम आपकी
0: बिल्कुल।
1: और मेरे बहुत ही प्यारे भाई अदनान अमानुल्लाह साहब हैं,
0: बेशक बेशक बिल्कुल,
1: आप हैं माशाल्लाह इस प्रोग्राम का एक बहुत खूबसूरत जो मैं समझता हूँ कि इजाफा है तो उसके रौनक को दोबारा करने वाले पढ़ने वाले।
0: जी ज़रूर इंशाल्लाह, क्योंकि एक पावर पैक शो होने जा रहा है, हमारी एक बड़ी फुल हाउस टीम है इंशाल्लाह जो परफॉर्म करेगी, और कॉमेडी भी है, म्यूज़िक भी है, फोक कल्चर जो है उसको हम साथ लेकर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अच्छा, हमने एक गाना भी मैंने प्ले किया शौकत अली साहब का छल्ला, बहुत ही खूबसूरत गाना, और उससे पहले मैंने एक प्रोग्राम का जो आगाज़ था वो मैं विलायत का नो आ गया से किया था, तो आप ये बताएं कि तुसी वलायत का नो आए।
1: मैं वलायत इस वक्त आया कि वलायती लोग बड़े सोने
0: हैं,
1: और वलायती लोग वही ने जेड़े मेरी आवाज सुनते ने, जेड़े मेरी मां बोली ने प्यार करने वाले ने, जेड़े मेरे आए ने, उन्होंने इस प्रदेश में भी प्रदेश नहीं रहने दिता, बल्कि मैं इसे लगने लग पे कि मेरी ही जमीन रह सकता है।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत आला, बहुत खूबसूरत बात।
1: जिसने हुजूर ने दयाल गैर के बीच अपनी जुबान, अपने कल्चर, अपने मजहब और रवादारी नु सहमति जिस तरह बचा रखिया, इसे उस तो भी ज्यादा ओदा प्रचार है, क्योंकि जी चीज जरूरत होती है ना ओरी कदर बहुत ही होगी,
0: बेशक
1: एहसास मैं इसे आज महसूस किया कि साढ़े लोग जड़े ने अलहमदुल्ला परसों तो आजाद कश्मीर तो मीरपुर तो गडियाल तो सेलम तो हर पासों हर शहर तो वो समझे तो उन्होंने वास्ते इसे तरीके कि अपने शहर की इज्जत अपने वतन की इज्जत।
0: इत्थे मैं ऐड करांगा इमरान भाई ताड़ी इजाजत दे नाल, मैं ऐड करना चाहांगा कि ए असल च चढ़दे ते लैंदे दोवें पंजाब जिहड़े ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿੰਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
1: ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
0: ਬੇਸ਼ੱਕ
1: ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਹੀ ਬਣਾ ਹੈ।
0: ਬੇਸ਼ੱਕ
1: ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ।
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਗੁਲਾਬ ਹੋ ਗਏ,
0: ਕਿਆ ਬਾਤ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ।
1: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈਏ
0: ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ,
1: ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੱਭੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਲੱਭੇ।
0: ਕਿਆ ਬਾਤ,
1: ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੇ ਬਾਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।
0: ਬਿਲਕੁਲ,
1: ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿੰਗਮ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੋ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਡੇਜ਼ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਥੇ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਭਾਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਸੇ ਬਾਤੇਂ ਕੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹਮੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਬ ਨੈਕਸਟ ਹਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸੁਣਾਨੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਆਪਕੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਮੁਝੇ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਉਸ ਐਰਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਸਿੰਗਰਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਕੇ ਗਾਣੇ ਆਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਮੇ ਗਾਏ ਜਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕੇ ਗਾਣੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਮੇ ਲੋਕ ਗਾ ਕਰ ਉਨਕੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉਸ ਗਾਣੋ ਸੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਜਬ ਆਪ ਸੁਣੇਂਗੇ ਤੋ ਆਪਕੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੌਰ ਮੇ ਰੀਮਿਕਸ ਔਰ ਰੀਮਿਕਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੇ ਹੱਸ ਬੋਲਵੇ, ਓਰਿਜਿਨਲੀ ਸੰਗ ਬਾਏ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ।

जी वेलकम बैक नॉटिंगम, और ये सब गाने जो हैं वो आप सुन सकते हैं लाइव इमरान शौकत अली की आवाज में, जो कि बिल्कुल कॉपी हैं अपने फादर शौकत अली साहब की। बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक हैं और बहुत ही उबूर रखते हैं अपने फन पे, और ये होंगे नॉटिंगम में फ्राइडे 6th of November 2026 एक्सेलसियर नवाब में, और आप जो हैं इसकी टिकट इस शो की हासिल कर सकते हैं फ्रॉम इवेंट ब्राइट, और इवेंट ब्राइट पे आप जाकर जो है वो ये टिकट्स ले सकते हैं, और 15th of October तक स्पेशल अर्ली बर्ड ऑफर ऑफ बाय वन गेट वन फ्री है, विच विल कॉस्ट यू जस्ट £10 ईच टिकट। तो बहुत ही ज़बरदस्त डील है, और इमरान शौकत अली के साथ साथ यहाँ पे परफॉर्म करेंगे मुनीर चौधरी, हमारे अपने लोकल नॉटिंगम के सिंगर, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, और इसके साथ शाज़िब मिर्ज़ा साहब, कॉमेडियन और पाकिस्तान टेलीविज़न फिल्म और थिएटर से इनका जो है ताल्लुक है, और बहुत ही खूबसूरत कॉमेडी करते हैं, एक्टिंग करते हैं, ये अवेलेबल होंगे। साथ साथ अदनान अमानुल्लाह होंगे और अज़र रंगीला भी होंगे। तो बहुत ही खूबसूरत शाम होने जा रही है, और उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस शाम को एंजॉय करेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए आप रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM के ऑफिशियल पेज पर भी जा सकते हैं। अगला गाना, और उसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और आपसे चाहेंगे इजाज़त। इमरान शौकत अली की अपनी आवाज़ में एक बहुत ही पॉपुलर गाना, जो अपने टाइम का एक बड़ा ही हिट गाना था, कुछ यूं था।

0: Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. SLASA, Students Learning and Skills Academy.
1: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
2: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
1: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
2: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
1: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
2: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
3: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
1: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
1: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: Ya per English or Arabic. तो सुनते रहिए
1: फजा 97.1 FM.
0: हो गया ना कमाल.
2: This is a public service announcement.
3: The station
4: that plays
5: foot tapping music.
6: Haza 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

देती मोहब्बत ना सिला कोई, सितम खुद देखे है खफा कोई, वफा भी करके है बुरा कोई, ऐसा भी करता है भला कोई। छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें, लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें, बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
0: bigger and better the radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: ना, ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर।

0: या टेक अवे रॉयल रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से रात 10:30 बजे तक विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066 9। मराया रेस्टोरेंट जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
6: It's
7: music never sounded better.
8: Fazan 97.1 FM.
7: I love it.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है? पाक फूड्स

0: है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
1: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें, मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
1: क्यों
0: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है बता दूँ क्या
1: क्या

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब्द के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: आशा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
1: आशा ट्यूशन सेंटर?
0: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
0: मसला ही कोई नहीं, आशा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
2: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए। आशा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
4: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.
5: You are listening 97.1 FM.

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: Hit music.
3: Back to back.
4: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
5: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
5: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.